0: भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका।
1: आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता?
0: और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है।
1: पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा। खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
7: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
6: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
7: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
6: होवे आज नाना ना कदम है, ई अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, त्याग, साहस और बलिदान की पहचान रामप्रसाद बिस्मिल है भारत की शान। उनसे मिलता है देश प्रेम का सम्मान।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए महापुरुष के जीवन के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने वाले हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ले के जीवन परिचय के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: भारत की स्वतंत्रता का इतिहास ऐसे वीर सपूतों के बलिदान से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, इन महान क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल्ले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक उत्कृष्ट कवि, लेखक, देशभक्त और समाज सुधारक भी थे।
1: बिल्कुल,
0: उनके जीवन का एक एक क्षण मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित था। उनका त्याग, साहस और देश प्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल,
0: राम प्रसाद बिस्मिल्ले ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था अंजलि, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। राम प्रसाद बिस्मिल्ले का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती देवी था। परिवार सामान्य था लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। बचपन से ही राम प्रसाद तेजस्वी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। वे हिंदू, उर्दू और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। युवा अवस्था में ही श्रोता साथियों, उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत होने लगी।
0: बिल्कुल,
1: उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। चारों ओर अन्याय, शोषण और अत्याचार का माहौल था। जागृति जी, देश की यह स्थिति देखकर राम प्रसाद का मन व्यथित हो उठा था। उन पर आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समाज सुधार, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के सिद्धांतों को अपनाया। इसी के साथ श्रोता साथियों, धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास मजबूत हो गया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए केवल बातें नहीं बल्कि साहसिक कदम उठाने होंगे।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से ही बिस्मिल्ला तेजस्वी, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अध्ययन किया था। उनकी रुचि साहित्य और कविता में थी। किशोरावस्था में वे ही राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हो गए थे। श्रोता साथियों, आर्य समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं अंजलि, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के जीवन पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा था।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया जिसने उनके विचारों को नई दिशा दी। आर्य समाज ने उनके देश प्रेम, सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान की भावना विकसित की। इसी प्रभाव के कारण उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें तो युवा अवस्था में ही राम प्रसाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। उन्होंने अनेक युवाओं को संगठित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुना।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि उन्होंने कई देशभक्ति कविताएं लिखी जो युवाओं को जोश भरने का काम करती थी। उनकी रचनाएं लोगों को जागृत करती थी और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती थी।
0: जी हाँ
1: जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था और संगठन में अनेक युवा क्रांतिकारी शामिल हुए।
0: बिल्कुल,
1: स्वतंत्रता के लिए सभी ने संघर्ष शुरू किया।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे तब बिस्मिल्ला का मन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए सक्रिय हो गए। उनकी मुलाकात नई क्रांतिकारियों से हुई और उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने युवाओं को संगठित करना शुरू किया और देशभक्ति की कविताएं लिखकर लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उनकी रचनाओं में देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा स्पष्ट दिखाई देती है। श्रोता साथियों, साहित्यिक योगदान के बारे में अगर आपको बताएं तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला एक महान कवि और लेखक भी थे। अंजलि, उन्होंने बिस्मिल्ला उपनाम से अनेक कविताएं लिखी थी। उनकी रचनाएं युवाओं में जोश और उत्साह भर देती थी।
1: जी जी,
0: उनकी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गई। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि इस कविता के मूल रचनाकार बिस्मिल्ला अजीमाबादी थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने इसे स्वतंत्रता संग्राम में लोकप्रिय बनाया और ये उनके नाम से भी व्यापक से जुड़ गया। उनकी लेखनी में देशभक्ति, आत्मबल और बलिदान की भावना झलकती थी। वे मानते थे कि कलम और तलवार दोनों राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साधन है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि राम प्रसाद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड था। क्रांतिकारियों को अपने आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी धन अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों से भयभीत हो गई और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। कुछ समय बाद राम प्रसाद और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार उन्हें कठोर दंड देकर क्रांतिकारी आंदोलन को दबाना चाहती थी, लेकिन जागृति जी बिस्मिल ने अदालत में भी अद्भुत साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उन्होंने किसी प्रकार की दया याचिका नहीं की और अपने विचारों पर अडिग रहे।
0: बिल्कुल अंजलि, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य केवल भारत को स्वतंत्र कराना है। जेल में रहते हुए भी राम प्रसाद बिस्मिल का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने आत्मकथाएं लिखी और अनेक प्रेरणादायी लेख लिखे। उनकी आत्मकथा आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: जेल की कठिन परिस्थितियों में भी वे देश की स्वतंत्रता के सपने देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों को भी साहस और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा दी।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साहित्यकार ही नहीं थे बल्कि एक उत्कृष्ट कवि भी थे, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बताया था। अंग्रेजी सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनवाई। 19 दिसंबर 1927 को गोखरपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी के समय भी उनके चेहरे पर भय नहीं था, वे पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने चले गए। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें सिखाता है कि देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होता है। वे हमें साहस, निष्ठा, ईमानदारी, राष्ट्रहित के सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन बताता है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसान किया जा सकता है। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे उनके बलिदान को लेकर बातचीत करें तो अंग्रेज सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई।
0: बिल्कुल,
1: फांसी पर चढ़ते समय भी उनके चेहरे पर भय नहीं था बल्कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने का गर्व था। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में देशभक्ति के गीत गाए और भारत माता की जय का उद्घोष किया।
0: बिल्कुल,
1: उनका बलिदान पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। श्रोताओं, उनके शहीद होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक तेज हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल्ला का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे साहसी थे, अनुशासित थे, विद्वान थे और राष्ट्रभक्त थे। उनमें नेतृत्व क्षमता कुट कुट कर भरी थी अंजलि। वे मानते थे कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर, साहसी और राष्ट्रहित के लिए समर्पित बनने का संदेश दिया।
0: जी,
1: उनका जीवन ये सिखाता है श्रोता साथियों हमें कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं के लिए राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जीवन एक आदर्श है। उनका संघर्ष बताता है अंजलि कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: युवा पीढ़ी उनके जीवन से देश प्रेम, साहस, अनुशासन, त्याग और समर्पण की सीख ले सकती है। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि राष्ट्र हित ही सबसे बड़ा धर्म है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन केवल स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि आत्मसम्मान, कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम की जीवंत मिसाल है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने यह साबित किया था जागृति जी कि उम्र, साधन और परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति के बड़े लक्ष्य के सामने बाधा नहीं बन सकती। जिस दौर में अंग्रेजी शासन का भय लोगों के मन में गहराई तक बैठा हुआ था, उस समय बिस्मिल जैसे युवाओं ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे देश में नई चेतना का संचार किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: आज भले ही जागृति जी स्वतंत्रता की लड़ाई समाप्त हो चुकी हो लेकिन देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अभी भी हमारे कंधों पर है। शिक्षा, ईमानदारी, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान और नागरिक कर्तव्यों के पालन के माध्यम से हम अपने देश को और मजबूत बना सकते हैं। और यही उन महान क्रांतिकारियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने एक बेहतर भारत का सपना देखा था।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल्ला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे अमर सेनानी थे जिनका नाम सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। उनका जीवन देशभक्ति, साहस, त्याग और बलिदान का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। आज आवश्यकता है श्रोता साथियों कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें संदेश भी देता है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और राष्ट्र के हित में प्राप्त की जाए।
0: बिल्कुल,
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज जब हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस लेते हैं तब हमें उन शहीदों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ये आजादी दिलाई थी।
0: बिल्कुल,
1: राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन युवाओं को यही प्रेरणा देता है कि सच्चा राष्ट्र प्रेम केवल नारों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने में है।
0: यदि
1: प्रत्येक युवा अपने भीतर देशभक्ति, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और सेवा की भावना विकसित कर ले तो भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।
0: बिल्कुल,
1: हम राम प्रसाद बिस्मिल के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तथा एक सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन परिचय को, आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और ये बातें आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्र
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है बिखरे पलों को समेट लेना। जी हाँ दोस्तों, हर टूटा हुआ सपना अंत नहीं होता, कभी कभी वही नई शुरुआत बन जाता है। तो श्रोता साथियों, आज की कहानी उन युवाओं के नाम है जो जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं न कहीं खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी बेरोजगारी की चिंता, कभी रिश्तों का टूटना, तो कभी खुद पर भरोसा कम हो जाना। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर यही है कि इंसान अपने बिखरे पलों को फिर से समेटना सीख जाए। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे युवा की कहानी जिसने हार के अंधेरे से निकलकर उम्मीद की नई रोशनी बनाई। तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन मैं एक शिक्षाप्रद कहानी को लेकर आपके साथ उपस्थित होती हूँ। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक भी मैंने आपको बता दिया था कि कहानी का शीर्षक है बिखरे पलों को समेट लेना। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस तरह से कि एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था विवेक। विवेक बचपन से ही बहुत होशियार था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन माँ बाप का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। दोस्तों, विवेक भी दिन रात मेहनत करता था। गाँव के स्कूल से पढ़ाई करके उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया था। शहर उसके लिए एक नई दुनिया थी। ऊंची इमारतें थी, तेज रफ्तार जिंदगी, प्रतियोगिता और हजारों सपनों से भरी भीड़। शुरुआत में तो आप सबको पता है कि सब अच्छा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, कॉलेज की फीस, किराए का कमरा, खाने का खर्च, सब कुछ भारी पड़ने लगा। ऊपर से पढ़ाई का दबाव। विवेक अक्सर रात में जाकर सोचता था कि क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। जिस लड़के की आंखों में सपने चमकते थे, अब उन्हीं आंखों में डर और थकान दिखाई देने लगी थी। कहा गया दोस्तों कि मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाना सिखाती है। अब एक दिन विवेक का परीक्षा परिणाम आया। वो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गया। दोस्तों, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसके दोस्त आगे निकल रहे थे, रिश्तेदार ताने दे रहे थे और वो खुद को सबसे पीछे महसूस कर रहा था। दोस्तों, उसने पढ़ाई छोड़ने तक का फैसला लिया। फोन बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया। कभी कभी इंसान बाहर से नहीं अंदर से हार जाता है। विवेक के साथ भी यही हो रहा था। दोस्तों, उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी के सारे पल बिखर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन श्रोताओं, कहा गया है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी रास्ता दिखा ही देती है। उसकी माँ की बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसकी माँ गांव से शहर आई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। माँ ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? विवेक रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैं हार गया, मेरे सपने टूट गए, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तभी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, खेत में जब फसल बिखर जाती है तो किसान खेती छोड़ नहीं देता। वो फिर से मेहनत करता है, फिर बीज बोता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि अगली फसल जरूर अच्छी होगी। दोस्तों, विवेक चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी में बिखरे पलों को रोकर नहीं बल्कि हिम्मत से समेटा जाता है। श्रोताओं, ये बात विवेक के दिल में उतर गई। और कहते भी है कि हार का दर्द अस्थाई होता है, लेकिन कोशिश छोड़ देना स्थाई हार बन जाती है। अगले दिन विवेक सुबह जल्दी उठा। कई दिनों बाद उसने सूरज की रोशनी को महसूस किया था। उसने तय किया दोस्तों कि अब फिर से वो शुरुआत करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह व्यायाम करना शुरू किया, मोबाइल का समय कम कर दिया, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले जो काम उसे बोझ लगते थे, अब वही काम उम्मीद बनने लगे थे। दोस्तों, अब वो समझ गया था कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलना ही बड़ी सफलता बन जाती है। हालांकि बदलाव आसान नहीं था दोस्तों। कभी मन टूटता, कभी पुराने डर वापस आ जाते थे। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि वो फिर से हार जाएगा, लेकिन अब उसने एक बात सीख ली थी, भागना समाधान नहीं है। जब भी वो कमजोर पड़ता, माँ की बातें याद करता और खुद से कहता, अगर जिंदगी बिखरी है तो उसे समेटने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। धीरे धीरे दोस्तों, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कॉलेज में उसने एक छोटे बच्चे को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उससे कुछ पैसे मिलने लगे। उसे सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि उसे खुद पर भरोसा वापस मिलने लगा था। और कहा भी गया है कि जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, दुनिया उसे गिरा नहीं सकती। तो दोस्तों, क्या है, समय बीतता गया, विवेक ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसने सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए मेहनत की थी। परिणाम आया और इस बार वो सफल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे दोस्तों, मेहनत के जीत के थे। वो समझ चुका था कि सफलता सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, सफलता तो वो ताकत है जो इंसान को टूट कर भी फिर खड़ा होना सिखाती है। धीरे धीरे विवेक गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। वो गांव जाकर बच्चों और युवाओं को पढ़ाने लगा। वो उनसे कहता था कि जिंदगी में हर किसी के कुछ पल बिखरते हैं,
लेकिन असली विजेता वही होता है जो उन पलों को समेट कर फिर आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आज का युवा बहुत दबाव में जी रहा है। करियर की चिंता है, सोशल मीडिया की तुलना है, परिवार की उम्मीदें हैं और भविष्य का डर है। इन सबके बीच कई युवा अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक असफलता हमारी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकती है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत समझिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है दोस्तों। समय खराब हो सकता है, लेकिन इंसान अगर हिम्मत न छोड़े तो समय भी बदला जा सकता है। जिंदगी में कभी ऐसा समय आए श्रोता साथियों, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, तो खुद को थोड़ा सा समय दीजिएगा। अपने अंदर की ताकत को पहचानिएगा, क्योंकि इंसान टूटता तभी है जब वह खुद पर विश्वास खो देता है। आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि उम्मीद की डोर थामे रखिए, बिखरे पल भी एक दिन खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ साल बाद विवेक अपने गांव के स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर आया। वही स्कूल जहां वो कभी फटी किताबों के साथ बैठा करता था। उसने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं भी टूटा था, बिखरा था, लेकिन मैंने खुद को हारने नहीं दिया। पूरा स्कूल दोस्तों तालियों से गूंज उठा था। उस दिन विवेक ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, धन्यवाद, तुमने हार मानने के बजाय खुद को फिर से समेट लिया। दूसरी कहानी हमें शिक्षा देती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी सपने टूटेंगे, कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने बिखरे पलों को समेटना सीख गए तो कोई भी तूफान हमें रोक नहीं पाएगा। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी बिखरेगी जरूर, लेकिन हिम्मत हो तो हर बिखराव को फिर से सजाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आगे भी कोई छोटी मोटी बातें रह गई वो आपसे मैं जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी कि बिखरे पलों को कैसे समेट लेना चाहिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कहानी तो मैंने आपको सुना दी थी और शिक्षा भी बता दी थी और कुछ छोटी मोटी बातें रह गई थी। तो दोस्तों छोटी मोटी बातें ये है कि कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी में आने वाली परेशानियां हमें खत्म करने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर युवा अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से जरूर गुजरता है जब उसे लगता है कि सब कुछ बिखर गया है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की उम्मीदें, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, तो कभी सपने भी टूट जाते हैं। ये सब इंसान को अंदर से कमजोर कर देते हैं दोस्तों, लेकिन यही समय इंसान को अपनी असली ताकत पहचानने का मौका भी देते हैं। विवेक की तरह कई युवा एक असफलता को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि असफलता सिर्फ एक घटना होती है, इंसान की पहचान नहीं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो मेहनत और धैर्य से दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है दोस्तों कि परिवार और अपनों का साथ इंसान को टूटने से बचा सकता है। कभी कभी माँ बाप के छोटे छोटे शब्द भी जिंदगी बदल देते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देते हैं तब अपने लोगों का विश्वास उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। युवाओं को समझना होगा श्रोता साथियों कि दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति की मंजिल अलग होती है और हर किसी का संघर्ष भी अलग होता है। किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा समझना सही नहीं है। जो व्यक्ति धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता है श्रोताओं, वही एक दिन सबसे मजबूत बनता है। ये कहानी हमें अनुशासन का महत्व भी सिखाती है। छोटे छोटे अच्छे बदलाव जैसे समय पर उठना, मेहनत करना, सकारात्मक सोचना और खुद पर विश्वास रखना धीरे धीरे जिंदगी को बदल देती है। बड़ी सफलता श्रोता साथियों एक दिन में नहीं मिलती बल्कि रोज की छोटी कोशिशों से बनती है। और सबसे जरूरी बात ये दोस्तों कि जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना आए, उम्मीद कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि टूटे हुए सपने भी दोबारा पूरे हो सकते हैं अगर इंसान मेहनत और हिम्मत का साथ न छोड़े। जो युवा अपने बिखरे हुए पलों को समेटना सीख जाते हैं वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए श्रोता साथियों आज जरूरत इस बात की है कि युवा हार से डरे नहीं बल्कि उससे सीखे। गिरना गलत नहीं है श्रोता साथियों, लेकिन गिरकर हमेशा जमीन पर पड़े रहना गलत है। अगर इंसान हर मुश्किल के बाद फिर उठना सीख जाएगा तो जिंदगी का कोई भी तूफान उसे रोक नहीं सकता। जब जिंदगी बिखर जाए श्रोता साथियों, तब रोने के बजाय खुद को संभाल लेना। जब सपने टूट जाए तब उम्मीद की नई शुरुआत कीजिएगा। जब रास्ते कठिन लगे तब याद रखिए, सबसे सुंदर कहानियां अक्सर सबसे कठिन संघर्षों से ही जन्म लेती है। हिम्मत रखने वाले युवा कभी पूरी तरह हारते नहीं है दोस्तों, वे हर हार से नई शुरुआत करना सीख जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि बिखरे हुए पलों को समेटना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है। और ये भी कहा गया है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही चमकदार होगी। तो दोस्तों ये थी कहानी और छोटी मोटी बातें। उम्मीद है कि आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और आप भी अपने बिखरे हुए पलों को फिर से समेटेंगे और अपने जीवन में आनंद और उत्साह से भर जाएंगे और अपने जीवन को एक नए लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से श्रोता साथियों विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय उचला है विदा लेने का। पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी ताकि आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई कथा कहानी में शिक्षा प्रद प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ बच्चों फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते ही हैं कि हम हर रविवार को आपको कुछ नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो आज भी बच्चों मैं हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम में कुछ नई कहानियों के साथ में। वो कहानियाँ कौन सी होने वाली है बच्चों, ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बाकी रह गया है बच्चों। वो क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। हाँ बच्चों, आपने सही पहचाना, गीत सुनने का। तो शुरुआत में बच्चों पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज के कार्यक्रम में हमारी कौन सी कहानियाँ होने वाली है। तब तक के लिए बच्चों आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में और सुनते रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM।

वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों, गीत तो यहाँ पर हमारा पूरा हो गया और बहुत प्यारा सा गीत भी रहा ये तो अब मुझे आपको ये बताना होगा कि आज के कार्यक्रम में हमारी कौन सी कहानियाँ होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी पहली कहानी के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में हमारी जो पहली कहानी होने वाली है वो थोड़ी सी अनोखी है। जैसा कि बच्चों, आपने अकबर और बिरबल का नाम तो सुना ही होगा। बच्चों सुना है ना, तो आप क्या जानते हैं कि दोनों में से बुद्धिमान ज्यादा कौन था? आज की इस कहानी से आप ये समझ जाएंगे कि अकबर और बिरबल में ज्यादा बुद्धिमान कौन था। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है हरे घोड़े की कहानी। हाँ दोस्तों, हरे घोड़े की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि एक शाम को राजा अकबर अपने प्रिय बिरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर करने के लिए निकले। बच्चों, वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भी भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। बच्चों फिर क्या हुआ, ऐसे में राजा अकबर को जाने क्या सोचा कि उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। हाँ बच्चों, ऐसा राजा अकबर ने कहा। इस बात से राजा व बिरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बच्चों, राजा चाहता था कि बिरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बिरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बच्चों, बिरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। फिर क्या हुआ बच्चों, 8वें दिन बिरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने जब ये सुना बच्चों, तो उन्होंने उन दोनों शर्तों के बारे में बिरबल से पूछा। तब बिरबल ने जवाब दिया, महाराजा पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। तो बच्चों, ये शर्त सुनकर राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बिरबल ने कहा कि घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है महाराजा कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7ों दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। बच्चों, ये सुनकर राजा थोड़ा सा हैरानी में आकर बिरबल को देखने लगा। तब बिरबल ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होगी। तब राजा अकबर बिरबल की यह बात सुनकर खुश हो गए और यह मान गए कि बिरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की पहली कहानी, हरे घोड़े की कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन कार्य में लग जाना चाहिए ताकि हम उस कार्य को मुमकिन कर सकें। यानी कि बच्चों, हम उस कार्य को कर नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं और वो कार्य हमारे लिए आसान हो सकता है। जैसा कि बच्चों, महाराज अकबर ने तो बिरबल को बहुत बड़ा कार्य दिया था कि उसे 7 दिन के अंदर हरे घोड़े लाने हैं, और ये बात वे दोनों ही जानते थे कि हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है। लेकिन बच्चों, बिरबल ने दिमाग लगाया और उसने राजा अकबर की बात सुनकर उन्हें ये समझा दिया कि सच में हरे घोड़े आखिर होते ही नहीं है।
तो बच्चों ये कहानी तो हमारी पूरी हो गई, तो मुझे अब आपको दूसरी कहानी के बारे में बताना होगा। तो दूसरी कहानी का नाम है नन्ही लाल चुन्नी। हाँ बच्चों, तो इस कहानी में क्या होने वाला है ये हम जरूर जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने अकबर बीरबल की हरे घोड़े की कहानी के बारे में जाना था, और गीत से पहले मैंने आपको हमारी दूसरी कहानी का नाम तो बता ही दिया था बच्चों, कि हमारी दूसरी कहानी होने वाली है नन्ही लाल चुन्नी की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी में क्या होने वाला है अगर मैं ये आपको बताऊं, तो एक समय की बात है बच्चों, जब एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपनी माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार किया करती थी। बच्चों, उसकी दादी गांव की दूसरी ओर रहती थी, जो कि रास्ता जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का हुड तोहफे में दिया, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड, यानी कि नन्ही लाल चुन्नी के नाम से बुलाते थे। बच्चों, नन्ही लाल चुन्नी अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। वह ज्यादातर समय वहाँ ही रहती थी और फिर अपने घर चली आती थी। बच्चों, दादी भी उस बच्ची को बहुत पसंद करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इस वजह से वह उसे ज्यादा नहीं मिल पाती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था बच्चों। तभी उसे यह पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही हैं। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुँची और उनसे पूछा कि माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हैं? इस पर बच्चों, नन्ही लाल चुन्नी की माँ ने कहा, बेटा, मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए ले जा रही हूँ। यह सुनकर बच्चों, वो बच्ची खुश हो गई और माँ से कहने लगी कि माँ, क्या ये भोजन और दवाइयाँ दादी के लिए मैं लेकर जाऊँ? इससे मुझे उनसे मिलना भी हो जाएगा। बच्चों, लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ इस बात के लिए राजी हो जाती है और उसे भोजन और दवाइयों की थैली देकर कहने लगती है, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे, सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। बच्चों, ये सुनकर वो

खुश हुआ और उसने सोचा कि अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है। बच्चों, भेड़िया तुरंत उस छोटी बच्ची के पास पहुंचा और उसे कहा, कैसी हो प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी। भेड़िये का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई बच्चों, लेकिन फिर डरते हुए उसने कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये भोजन आपको नहीं दे सकती, यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो जंगल के उस पार अकेले रहती है। इसके बाद बच्चों, उस छोटी बच्ची ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़ियो को देते हुए कहा, ये लीजिए, आप ये खा लीजिए। बच्चों, भेड़िये ने उस बच्ची के हाथ से सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगल लेता हूँ, फिर बाद में इसे निगलूंगा, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा, ऐसा भेड़िये ने सोचा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, कि भेड़िये ने उस नन्ही बच्ची से कहा, अरे सुनो, जरा रुको और मेरी बात तो सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। बच्चों, यह सुनकर छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है और भेड़िये से कहने लगती है, सच में, पर कैसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी ठीक कैसे होंगी। बच्चों, इस पर भेड़िये ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें वो तरीका जरूर बताऊंगा, इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी, इन स्ट्रॉबेरीज में जादुई शक्तियां हैं, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। बच्चों, भेड़िये की ये बात सुनकर छोटी बच्ची ने कहा, अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ले आती हूँ। इतना कहकर बच्चों, वह नन्ही लाल चुन्नी स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चालाक भेड़िये ने योजना बनाई बच्चों कि पहले दादी माँ के घर चलते हैं, फिर उसके बाद उस बच्ची को देखते हैं। दरअसल बच्चों, भेड़िये ने ये अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर उस नन्ही लिटिल हुड को निकलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ के घर की ओर चल पड़ा। बच्चों, दादी के घर पहुँच कर भेड़िये ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही थी। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जाग गई और भेड़िये को देखकर वो थोड़ा चौंक गई। उसने भेड़िये से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर भेड़िये ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया नहीं माना और वह दादी माँ को निगल गया। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ कि जब वह छोटी बच्ची स्ट्रॉबेरीज लेकर गाना गुनगुनाते हुए दादी के घर पहुंची, तो वहाँ पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी, मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची, दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर के अंदर आ जाओ। बच्चों, यह आवाज सुनकर उस बच्ची को थोड़ा आश्चर्य होता है। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज थोड़ी बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने बच्चों गेट खोला और घर में घुस गई। यहाँ उसने देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा था। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी, ओ दादी, आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है। इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनकर बच्चों, वो छोटी सी नन्ही बच्ची अंदर आ गई। फिर उसने कहा, अच्छा, लेकिन आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं, पहले तो ये ऐसे नहीं थे। इस पर फिर से भेड़िये ने कहा, अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह सुन पाऊँ, इसलिए मैंने अपने कान बड़े करवा लिए हैं। इसके बाद बच्चों, उस बच्ची ने पूछा, तो दादी, आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई। इस पर दादी ने कहा, बेटा, वो इसलिए ताकि मुझे तुम्हें देखने में परेशानी न हो। इसके बाद फिर से उस बच्ची ने पूछा, अच्छा, तो फिर ये हाथ, ये क्यों इतने लंबे हो गए। इस पर दादी ने कहा, ये हाथ तुम्हें गले लगाने के लिए लंबे हुए हैं मेरी बच्ची। बच्चों, ये सुनकर उसे फिर से थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने पूछा, तो आपके दांत, वो इतने लंबे कैसे हो गए। इस सवाल के जवाब पर

भेड़िया उसके सामने आ गया बच्चों और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। बच्चों इतना कहते ही भेड़िया उस बच्चे की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगल गया। इसके बाद बच्चों भेड़िया दादी की पलंग पर सो गया और जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। तभी एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था, जहाँ उसे जोर जोर से खर्राटे की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह रुक गया। उसने देखा कि खर्राटे की आवाज दादी माँ के घर से आ रही थी। वह घर के अंदर घुस गया, जहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया दादी माँ के पलंग पर सोया हुआ था। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। वह कैंची लाया और भेड़िए का पेट काट कर दादी माँ और उस नन्ही बच्ची को बाहर निकाल लिया। इसके बाद लकड़हारे ने तुरंत उस भेड़ियों के पेट में बड़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माँ ने उसका पेट सिल दिया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि भेड़िए के पेट से बाहर निकलते ही नन्ही लाल चुन्नी ने सबसे पहले अपनी दादी माँ से पूछा कि दादी माँ आप ठीक तो है ना, उस भेड़िए ने आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। बच्चों इस बात पर दादी माँ ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद दादी माँ वह नन्ही बच्ची और लकड़हारा तीनों घर के दरवाजे के पीछे छिपकर दुष्ट भेड़िए की नींद से जागने का इंतजार करने लगे। फिर क्या हुआ बच्चों, कुछ देर बाद भेड़िया नींद से जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट काफी भारी है। उसने सोचा कि शायद उसने दादी माँ और उस बच्ची को निगला है, इस कारण उसका पेट भारी हो गया है। इसके बाद वह नदी किनारे पानी पीने के लिए निकल गया। बच्चों जैसे ही भेड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे नीचे झुका, वह नदी में ही जा गया। इसके बाद दादी माँ वह नन्ही बच्ची और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। बच्चों घर पर पहुंचकर उस नन्ही बच्ची ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी। साथ ही उसने अपनी दादी माँ की जान बचाने के लिए लकड़हारे का शुक्रिया भी अदा किया। फिर तीनों ने एक साथ हंसी खुशी पूरा दिन बिताया और मजे से बैठकर चॉकलेट केक खाया। तो बच्चों ये थी हमारी प्यारी सी कहानी नन्ही लाल चुन्नी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और किसी भी अजनबी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से बच्चों हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। इन कहानियों के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरीके से ये जान गए कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है, और पहली कहानी के माध्यम से हम ये जान पाए थे कि हमें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर किसी भी कार्य को असंभव होते हुए भी संभव बनाना है। तो बच्चों कहानियाँ तो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो बच्चों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, जगाओ जल्दी अपने मन को, लक्ष्य पर उसे लगाना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब हमें भी दौड़ना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे, बढ़कर आगे अब जादू करना ही होगा। केवल सोचने से मंजिलें पास नहीं आती, कुछ करके सपनों को पाना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब हमें दौड़ना ही होगा। कब तक खुद के जीवन से हम खेलेंगे, अब कम समय में अधिक करना ही होगा। सामने दरिया बहुत है पार करने को, अब तो तैरने का हुनर सीखना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब हमें दौड़ना ही होगा। आस यही है कि हमें पाना है, ए मंजिल तुम्हें गले लगाना ही होगा। तू दूर है हमसे, यह अभी का सच है, हमारे कदमों को तुम्हें कल चूमना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब तुम्हें दौड़ना ही होगा। कल का सूरज ढल गया तो क्या, आज उगता सूरज बनना ही होगा। काले बादल का घूंघट सामने है तो क्या, घूंघट को उठाकर मंजिल को पाना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब तुम्हें दौड़ना ही होगा।

0: साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं। तो आज भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत अवश्य जुड़ेंगे। उनके माध्यम से हम ढेर सारी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन के कुछ अहम पन्नों को। सर नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से आज जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान जो है वो हर रविवार को आता है और इसमें हम मुख्य अतिथि को कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ते हैं। तो सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं मूलतः उज्जैन शहर का रहने वाला हूँ।
0: जी जी।
1: अभी वर्तमान में मैं उदयपुर में रहता हूँ और उदयपुर में रह करके विकास कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया आपके परिचय में कि आप विकास कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो सर सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन किस तरीके से बीता, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी का जो बचपन है वो अलग अलग तरीके से बीतता है, क्योंकि किसी के जीवन में सुख, किसी के जीवन में दुख, तनाव, अलग अलग चीजें आर्थिक स्थिति के तौर पर सभी के जीवन में होती है। तो ऐसे में आपका बचपन किस तरीके से बीता, मैं ये जानना चाहूंगी।
1: मेरा बचपन का जहाँ तक सवाल है, एक सामान्य बचपन रहा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं आए और बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा लविश भी नहीं रहा, लेकिन मैं एक सामान्य जीवन जिया। मेरे पिताजी जो है सरकारी अध्यापक रहे और घर का सबसे बड़ा बच्चा होने की वजह से मुझे जिम्मेदारियाँ भी थी और कहें तो कुछ स्वतंत्रताएँ भी थी।
0: जी जी।
1: और तो मैं उज्जैन में रह करके मेरी पढ़ाई हुई है। शिप्रा के तट पे खेलना जाना, नदी में तैरना, ये सब बचपन की यादों का हिस्सा है।
0: जी बिल्कुल।
1: जो अपने मित्रों के साथ में मैं करता रहता था। और उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है प्रसिद्ध, उसी के पास में उसके प्रांगण में खेलते हुए ही हमने अपनी पढ़ाइयाँ की है। यही हमारा पढ़ाई का बैकग्राउंड है।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत अच्छी तरीके से और सरलता पूर्वक पूरी तरीके से बीता, तो यही सर अब मैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगी कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, पढ़ाई का जो आपका सफर था वो कैसा रहा, क्या उसमें कोई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा?
1: मुझे मेरी पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा या कहे कि मेरी पूरी पढ़ाई उज्जैन नगरी में हुई है। कक्षा 2 से लेकर के मैंने अपनी PG पोस्ट ग्रेजुएशन जियोलॉजी सब्जेक्ट में किया और ये सभी मेरे जो है उज्जैन के में ही हुए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा। ये ज़रूर था कि मेरा शायद घर से मेरा कॉलेज बहुत दूर होता था, लेकिन मित्रों ने आने जाने में हमेशा मदद किया।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और उन्हीं की बदौलत मैं पढ़ पाया।
0: जी बिल्कुल सर। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो पढ़ाई का क्षेत्र है वो उज्जैन में ही रहा और आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। यही सर मैं आपके घर परिवार के बारे में जानना चाहूंगी कि माता पिता का किस तरीके से आपको पढ़ाई को लेकर और अन्य जो चीजें रहती हैं जो बचपन से ही सीखने की जरूरत होती है, उनको लेकर क्या सपोर्ट रहा?
1: पूरा सपोर्ट रहा। मुझे अपने माता पिता से पढ़ने के लिए काफी वो रहा, मतलब कहें कि मेरे पिताजी तो खुद ही प्राइमरी अध्यापक थे, तो मेरी प्राथमिक शिक्षा में उनका बहुत योगदान था। और साथ ही ये था कि मेरी माताजी ने, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरी माताजी भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाइयाँ करती थी।
0: जी जी।
1: तो उनकी जब पढ़ाई चलती थी तो उनकी पढ़ाई से मेरे को भी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिलती रहती थी, तो इसलिए पढ़ाई का माहौल पूरा हमारे घर में रहा। जब मैं पढ़ रहा था तो चूंकि माँ भी पढ़ रही थी तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और पिताजी भी पढ़ाते थे तो चलता था, तो पढ़ना ही खेलना है और खेलना ही पढ़ना है।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से आपके घर परिवार के बारे में और ढेर सारी जानकारी बताई है, यही मैं आपके बचपन की हॉबीज के बारे में जानना चाहूंगी कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे बड़े होकर, और क्या अभी जिस क्षेत्र में आप हैं क्या आपका सपना वही था?
1: शायद ऐसा विशेष रूप से हम जिस समय में बड़े हुए वहाँ सपने करियर को लेकर के ज्यादा सपनों का बात तो उस समय नहीं चलता था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और चुनाव का इतना बड़ा माहौल नहीं होता था हमारे समय में। दो ही चुनाव होते थे कि आपने गणित लिया है तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, और आपने कोई और सब्जेक्ट लिया है तो फिर आपका फील्ड अलग रहेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो चूंकि मैंने तो बायोलॉजी लिया था तो कहीं ना कहीं मेरा जीव विज्ञान से जरूर संपर्क था, और ये था कि मैं अपने घर में, हमारा एक बढ़िया बगीचा था जो मेरी दादी मेंटेन करती थी, तो हमारे घर के यहाँ पे एक वो के परंपरागत रूप से सब्जियों की खेती और ये सब होती थी, और मुझे लगता है कि भले ही मैं पढ़ाई कुछ कर रहा था लेकिन साथ साथ ही जो अभ्यास चल रहे थे वो पोषण के आसपास चल रहे थे।
0: जी जी बिल्कुल।
1: जो कि मेरे आज के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो वो सीधी सीधी पढ़ाई की बात करें तो शायद उसके साथ लिंक होता नहीं दिखता है, लेकिन आप जब बड़े हो रहे हैं उस समय आसपास में जो पढ़ रहे हैं उससे जरूर संपर्क बनता है।
0: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, तो सर अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अभी जिस पद पर हैं, जिस तरीके से आप विकास के कार्य कर रहे हैं, ये कार्य करना बहुत कठिन होता है, तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं और किस तरीके से उन समस्याओं से निपटने के लिए आप सभी लोगों को जागरूक करते हैं?

0: रूप से अभी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि अपने पोषण को लेकर के जानकार होते हुए भी अनजान सा है। कई सारे ऐसे मिथ हैं जो कि लोगों के दिमाग में या तो गूगल के माध्यम से या अन्य प्रसारण माध्यमों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि गलत जानकारी भी मिल रही है और गलत जानकारी के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है आधा अधूरा ज्ञान लेकर के या नीमकीम जैसा खतरा ज्ञान जैसा हो जा रहा है तो वो लोगों को परेशान कर रहा है। और मुझे लगता है कि पोषण के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय की।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर पोषण को लेकर हम बात करते हैं तो अभी के समय में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में माता पिता जो बच्चों की परवरिश करते हैं तो बचपन से ही किस तरीके से माता पिता को अपने बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है? और अभी के समय में हम जो युवा साथियों को देख रहे हैं उनका अधिकतर जो खान पान है और जो उनकी जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसमें ये जरूर है कि माता पिता को बच्चों के पोषण का ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखने के साथ साथ ये भी है कि समय की मांग ये कहती है कि कुछ बदलावों की भी आवश्यकता होती है। हर पीढ़ी के समय कुछ बदलाव होता है, खान पान में बदलाव होता है, दूसरी संस्कृतियों के साथ में जब मिलन होता है तो आपके खान पान में बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं माता पिता का ये जिम्मेदारी बन जाता है कि वो पोषण को ध्यान में रखते हुए कैसे दोनों संस्कृतियों का मिलन करे या ताकि उससे जो खान पान है उसको उसी रूप में देखा जा सके। जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो बच्चे जो है बर्गर पिज्जा इस दिशा में जा रहे हैं,
1: जी जी बिल्कुल,
0: है ना, कहीं उनको बाजार के खाने की वो रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारी रसोइयों में भी नवाचार करने की जरूरत है कि हम अपनी जो डिशेज हैं, अपने जो सांस्कृतिक जो खान पान है उनको उन नए रूप में कैसे ला करके बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, जैसे कि बच्चे सेजवान राइस ढूंढ रहे हैं। अब सेजवान राइस अपने आप में एक अलग किस्म का मसाला है, तो हम हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के वो हैं, तो क्या हम इस तरह के नवाचार करके उनको उनके टेस्ट के करीब ले जा सकते हैं ताकि पोषण भी मिले और उनका स्वाद भी बना रहे।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने पोषण को लेकर ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो यही युवा साथियों को जीवन शैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है। ऐसे में अगर हम विकास की बात करें या कोई और चीज को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे युवा साथियों की होती है, लेकिन अभी के समय में हमारे जो युवा हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर जा रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया में एक अलग ही मग्न हो गए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे?
0: एक्चुअली समय अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है उसमें पीढ़ियों के बीच में संवाद कम हो गए हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, युवा अपने मतलब जो है या कहें कि पिताजी या माता के साथ में उनका संवाद बहुत सीमित हो गया है। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा वहाँ काम है, मेरा यहाँ काम है, जो बैठ करके जो समय बिताने की बात है या तो दादा दादी के साथ में या नाना नानी के साथ में, जिसमें कि हम एक्चुअली परंपरागत ज्ञान को एक दूसरे पीढ़ी तक ले जा सकें, वो संवाद का अभाव हो गया है।
1: जी बिल्कुल।
0: और मुझे लगता है कि ये काम चूंकि युवा साथियों का जो है ये युवा साथियों के मदद से ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है और युवा साथियों की ये जिम्मेदारी बन सकती है कि वे अपने अपनी परंपरा के ज्ञान को टटोले, अपने पिता के माध्यम से, अपनी माता के माध्यम से, अपना नाना नानी के माध्यम से, तो कहीं समय निकालें और अपने बुजुर्गों के ज्ञान को आदर दें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें इसके पहले कि वो गुम जाए।
1: जी बिल्कुल। तो सर इन सारी चीजों के लिए हम किस तरीके से अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं?
0: इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे पोषण की बात करें तो हम अपने माता पिता के साथ में या अपने दादा दादी के साथ में पोषण के ऊपर चर्चा करें।
1: जी जी।
0: पुराने खाना पान के बारे में चर्चा करें कि हम उन खान पानों को समझने का प्रयास करें।
1: जी जी।
0: और स्वयं भी जानने की कोशिश करें। एक्चुअली इसमें हो ये रहा है कि समय के अभाव के नाम पे हम एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर पा रहे।
1: जी बिल्कुल सर।
0: और शायद ये काम युवा आगे आके कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने आपकी बचपन से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, साथ ही विकास को लेकर और बच्चे और युवा साथियों के लिए क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं उनको लेकर ढेर सारी जानकारी से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो है वो खेलें और अपने जीवन को खोजने का प्रयास करें
1: जी बिल्कुल,
0: और अपने जीवन को अपनी नजर से भी खोजें, अपने माता पिता की नजर से भी खोजें, अपने दादा दादी नाना नानी की नजर से भी खोजें
1: जी जी।
0: और उससे अगर वो ये तीन पीढ़ियों की नजर से खोजेंगे तो उनको जीवन जीने का आनंद आएगा
1: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद, आपने भी मुझे यहाँ वागड़ रेडियो में श्रोताओं से रूबरू होने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों जैसा कि अभी हमारे कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, साथ ही युवा साथियों को लेकर, बच्चों को लेकर और अभिभावक को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है ये सारी भी बातें जानी। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारे जो विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए थे उनकी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से मैं विदा लेना चाहूंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
2: साथियों, अहिंसा के बिना सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। अहिंसा का पहला सिद्धांत हर अमानवीय चीज के प्रति असहयोग करना है।
3: बिल्कुल,

जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में।
1: जी हाँ।
0: जैसा कि कशिश पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हम जान पा रहे थे सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में,
1: बिल्कुल
0: इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं। तो श्रोता साथियों, 1940 के बाद उनका दावा उड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। मुसलमानों को उनका अलग देश मिलना चाहिए। जिन्ना एक युक्ति में लेते थे कि अपने कल्पना के देश पाकिस्तान के विषय में वे कभी स्पष्ट चित्र नहीं बनाते थे।
1: बिल्कुल।
0: सामने वाला पक्ष यदि कशिश इस बाबत कोई निपटारा करने को तैयार हो तो उनकी मांग उससे एक कदम आगे बढ़ती। जितना सामने वाले पक्ष ने स्वीकार कर लिया हो उतना वे कब्जे में कर लेते।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, वे अपने अनुकूल स्थान व तिथि पर हमेशा मिलना तय रखते और अगर किसी मामले में उलझन महसूस करते तो तुरंत कह देते कि मुझे अपनी काउंसिल से आदेश लेना पड़ेगा। यह बात सर्वविदित थी कि जिन्ना ही मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा थे। कार्यकारिणी या काउंसिल का आदेश लेने के बहाने वे मात्र अतिरिक्त समय हासिल कर लेते थे।
1: जी हाँ दिलीप जी, हम देखते हैं साथियों कि हिंदू और मुस्लिमों के दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को आखिरकार जिन्ना और मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे का आधार बनाया। परंतु दोस्तों, देश में दो अलग अलग राष्ट्र हैं ये बात लीग ने अपने लाहौर प्रस्ताव में पहली बार 1940 में कही। इससे वर्षों पूर्व कट्टरपंथी और हिंदुत्ववादियों ने तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर ही दिया था अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: वहीं 1923 में अपने ग्रंथ हिंदुत्व में श्री विधा सावरकर ने यही सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
0: जी जी।
1: और फिर 1937 में हिंदू महासभा के एक अध्यक्षीय भाषण में यही बात फिर से जोर देकर कही गई थी। हम देखते हैं कि गांधी जी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का आखिर तक श्रोता साथियों विरोध किया था। वे कहते थे कि हिंद के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज तो इस देश में ही जन्मे थे।
0: बिल्कुल।
1: धर्म बदलने से किसी का राष्ट्र कैसे बदल सकता है। कांग्रेस ने दोस्तों परिस्थितिवश बंटवारा स्वीकार किया था, पर स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान किसी एक धर्म पर आधारित राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि संप्रदाय निरपेक्ष ही बनाया था।
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जिस बैठक में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के दोनों प्रस्ताव नामंजूर कर दिए थे, उसी बैठक में लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का संकल्प घोषित किया था।
1: बिल्कुल।
0: इस बारे में श्रोता साथियों, जिन्ना ने अपनी काउंसिल के सामने दावा किया था कि ब्रिटिश सरकार के पास अपनी फौजे हैं और कांग्रेस के पास अपना सविनय अवज्ञा का शस्त्र है।
1: जी जी।
0: वैसे ही अपने पास भी अपनी पिस्तौल है, उसे उपयोग में लाने का समय अब आ चुका है। लीग काउंसिल के दूसरे सदस्यों ने तो खुली भाषा में हिंसा के इस्तेमाल की धमकी दी थी।
1: बिल्कुल।
0: 16 अगस्त 1946 का दिन जो है वो लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। लीग के आदेश के मुताबिक कलकत्ता में उस समय जबरदस्त दंगे भड़क उठे थे। कह सकते हैं कशिश कि जिसे देश ने द ग्रेट कलकत्ता, किलिंग्स कलकत्ता के कत्ले आम के रूप में जाना।
1: बिल्कुल।
0: उस समय से शुरू होने वाले हिंसा के इस दावानल ने उत्तर भारत को हिंसा की आग में झोंक दिया। कलकत्ता, नुआखाली, बिहार, दिल्ली, पंजाब के कई सीमा प्रांत, प्रत्येक स्थान पर भयानक कौमी दंगे हुए जो आखिरकार स्वाधीनता के पूर्व और बाद के कत्ले आम में बदल गए।
1: जी हाँ साथियों, गांधी जी ने कोहाट के दंगे के बाद कौमी एकता संबंधित अपनी बात का अधिक प्रभाव होते नहीं देखा।
0: बिल्कुल।
1: इस संबंध में अंजलि जी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलना या लिखना छोड़ दिया था। वहीं गोलमेज परिषद के समय उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों के साथ सुलह करने के सभी संभव प्रयास भी किए थे।
0: जी जी।
1: हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने चुन चुन कर उस परिषद में ऐसे लोग भी आमंत्रित किए थे जिनके साथ समाधान हो ही न सके।
0: जी हाँ।
1: अंतिम कैद से छूटने के बाद गांधी जी ने साथियों स्वयं मांग करके जिन्ना के साथ मुलाकात भी रखी थी। परंतु श्रोता साथियों, 16 दिनों के प्रयास के बावजूद भी उनको उसमें सफलता नहीं मिल पाई।
0: जी हाँ।
1: जिन्ना देश के टुकड़े करके अलग पाकिस्तान बनाने से कम कुछ कर लेने को तैयार नहीं थे और गांधी जी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: हम जानते हैं साथियों कि स्वतंत्रता प्राप्ति से 10 वर्ष पूर्व प्रांतीय स्वराज के समय अंग्रेज सरकार की नीति कांग्रेस और लीग दोनों को बराबर बराबर वजन देने की थी। हालांकि शुरुआत में तो 8-8 प्रांतों में से कांग्रेस का मंत्रिमंडल ही था, लीग का एक भी प्रांत नहीं था।
0: जी हाँ।
1: अंग्रेज सरकार की नौकरशाही में बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें समय की आहट समझ में नहीं आई। अतः वे हिंद की स्वतंत्रता को यथासंभव पीछे धकेलने के जी जान से प्रयत्न करने लगे।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, ऐसा करने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित न हो, यही उनकी पसंद थी। आखिरकार जब अंतिम वायसराय माउंटबेटन के आगे गांधी जी ने अपना यह सुझाव रखा कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, तो वे ही अपना मनपसंद मंत्रिमंडल बनाए।
0: बिल्कुल
1: कांग्रेस जिन्ना के उन तमाम कदमों का श्रोता साथियों समर्थन करेगी जो देश के विरुद्ध नहीं होंगे।
0: बिल्कुल कशिश, तब यह सुझाव आगे न बढ़े इसके लिए ब्रिटिश नौकरशाही ने अपनी तमाम चतुराई का प्रयोग किया। इस सुझाव का एक भाग ऐसा था कि देश हित में क्या है और क्या नहीं, इस बाबत यदि मतभेद हो तो इस बारे में आखिरी निर्णय अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं वरन एक व्यक्ति के रूप में माउंटबेटन दे। संपूर्ण सुझाव यदि जिन्ना स्वीकार न करे तो यह ऑफर कांग्रेस के सामने रखी जाए, ऐसा भी गांधी जी ने सुझाया। प्रस्ताव को सूर्य की रोशनी देख ही नहीं पाए, ऐसी सावधानी ब्रिटिश नौकरशाही ने बरती थी।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें चल रही हैं, ये बातें आगे ऐसे और भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि इससे पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करते हैं आगे। तो महत्वाकांक्षी माउंट बैटन को स्वयं पंच अथवा निर्णायक बनाए जाने वाला यह प्रस्ताव आकर्षक भी लगा।
1: बिल्कुल,
0: उनका मनोरथ अंग्रेज सरकार के समक्ष हिंद की समस्या के समाधानकर्ता के रूप में यश बटोरने का था। कशिश, उन्होंने वायसराय के रूप में पद ग्रहण करने से पहले ही देश का विभाजन करने का स्वयं निर्णय कर लिया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल से इसके स्वीकृति लेकर भारत आए थे। यह निर्णय समय से भी पहले क्रियान्वित करने की अपनी कार्य कुशलता की छाप वह ब्रिटेन और दुनिया के समक्ष अंकित करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हिंद का भारी भरकम प्रशासन संभालना ब्रिटेन के लिए लाभप्रद नहीं रह गया, इसलिए श्रोता साथियों, ब्रिटिश सरकार यथा संभव शीघ्र ही इस बोझ से मुक्त होकर ब्रिटिश राजमंडल में भारत व पाकिस्तान को स्थान देकर फौजी दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थी।
1: बिल्कुल साथियों, माउंटबेटन ने भारत आकर ये देखा कि मुस्लिम लीग तो देश में अंतर विग्रह फट जाने की जोखिम उठाकर भी अलग देश चाहती थी, कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती थी, पर इसके विकल्प के रूप में यदि देश में अंतर विग्रह फट पड़ता अंजलि जी, तो जोखिम उठाने के बजाय वह विभाजन स्वीकार करने को तैयार हो गई थी।
0: बिल्कुल,
1: पर श्रोता साथियों, वह पंजाब और बंगाल के विभाजन के साथ ही था। किसी भी तरह के विभाजन का पूर्ण विरोध करने वाले तो अकेले गांधी जी ही थे।
0: जी जी,
1: श्रोता साथियों, वे चट्टान की तरह दृढ़ थे, अतः माउंटबेटन ने उनको एक किनारे रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने प्रभाव में लिया। अंततः विभाजन के कागजों पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद गांधी जी को इसकी जानकारी दी गई। साथियों, हम देखते हैं कि विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जाने गई।
0: बिल्कुल,
1: करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और अरबों रुपयों की संपत्ति यूं ही बर्बाद हो गई। साथियों, इन समग्र करुणांतिका के 1.5-2 वर्ष बाद तक गांधी जी लगभग अकेले कौमी एकता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जूझते रहे।
0: जी,
1: नोआखाली में उन्होंने गांव-गांव और झोपड़े-झोपड़े में जाकर हिंदुओं को हिम्मत बंधाई। इसी तरह बिहार में गांव-गांव जाकर उन्होंने मुस्लिमों को अपने मूल स्थान पर वापस लाने का भी प्रयास किया। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कलकत्ता और दिल्ली में आमरण अनशन करके इन दोनों नगरों को कौमी आग में भस्म होने से उन्होंने ही बचाया।
0: बिल्कुल कशिश, कट्टर हिंदुवादियों को गांधी जी के इस प्रयास में मुसलमानों का तुष्टिकरण और हिंदुओं से द्रोह दिखाई देता था। वे कोहार और नोहा खाली में गांधी जी ने जो किया था उसे लेकर आंखों आगे कान रखते थे, पर बिहार और दिल्ली को आगे रखते थे। सचमुच देखे तो गांधी जी के शांति प्रयास उनके मूल हिंदुत्व वर्चस्व वाले द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध जाते लगते होंगे। फिर गांधी जी का भारत की जनता पर इतना ज्यादा प्रभाव देखकर तथा वह प्रभाव हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में पड़ते देखकर वे आकुल व्याकुल होते थे। जिस दिशा में उनको गति करनी थी उनमें गांधी जी का पुण्य प्रभाव बीच में आता दिखाई देता था। उनमें से कई तो वर्षों से गांधी जी की हत्या करने का प्रयास कर ही रहे थे। आखिरकार पांचवे या छठे प्रयास में वे 79 वर्ष के निशस्त्र भगवत व्रत को मारने में सफल हुए।
1: बिल्कुल,
0: इस हत्या को उन्होंने तो व्रत की ही संज्ञा दी थी, मानो राम या कृष्ण की भूमिका अदा करते हुए रावण या कंस शिशुपाल का वध करते हो।
1: जी,
0: देश के इतिहास की दृष्टि से श्रोता साथियों, गांधी जी ने कौमी एकता के लिए कैसे प्रयास किए, उनमें क्या क्या बाधाएं आई, अभी तक हमने इन पर ही विचार किया है। सर्वधर्म संभाव गांधी जी के लिए अपने व्यक्तिगत आश्रम जीवन की आचार संहिता था। व्यक्तिगत स्तर पर और अपने आसपास के वातावरण में सांप्रदायिक एकराग्यता विकसित करने का कोई भी प्रयास उन्होंने जाने नहीं दिया था।
1: बिल्कुल,
0: इन प्रयासों की वजह से ही उनका जीवन ऐसा तपोमय बना था श्रोता साथियों कि उनके प्रभाव से जलने वाले कलकत्ता व दिल्ली महानगर शांत हो गए।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारे श्रोता साथियों से हमारे ढेर सारी रही और हमने जाना कि सांप्रदायिक सौहार्द प्रकरण क्या है।
0: बिल्कुल,
1: इसी

0: प्रकरण को लेकर अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
2: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
0: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर। मेरी ओर से स्वीकार कीजिएगा दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते ही हैं कि आज वार रविवार का दिन है और हर रविवार को हम आपके स्वास्थ्य और क्षमता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम दादी माँ की रसोई लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको स्वास्थ्य वर्धक व्यंजन विधि के बारे में बताते हैं। तो आज भी मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ श्रोता साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, क्योंकि श्रोता साथियों हम सभी जानते हैं कि रविवार ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ हर जगह अवकाश होता है और अवकाश के दिन हमें कुछ नई नई चीजें खाने का मन करता है। और ऐसे में हमारे घर की जो माता बहनें होती हैं वो थोड़े से चिंतित हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आज रविवार का दिन है और मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे बच्चों और मेरे परिवार जनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो श्रोता साथियों आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपने घर पर ही कुछ ही समय में स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों आज हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है मूंग दाल को लेकर। श्रोता साथियों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मूंग की जो दाल होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। और दाल तो कोई भी हो, सारी दालें प्रोटीन से भरपूर तो होती ही है, लेकिन जहाँ पर मूंग दाल की बात की जाए तो मूंग दाल के अलग ही फायदे श्रोता साथियों हमें देखने को मिलते हैं हमारे स्वास्थ्य पर। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताऊंगी कि मूंग दाल के क्या फायदे हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं, साथ ही मूंग की दाल का उपयोग करके हम घर पर ही स्वादिष्ट व्यंजन क्या बना सकते हैं, तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनवाकर हम आपको पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो आइए दोस्तों पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में पहला गीत।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं मूंग दाल को लेकर। श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले भी मैंने आपको बताया कि मूंग दाल के तो ढेर सारे फायदे होते हैं। वैसे तो दाल श्रोताओं हर तरह की स्वादिष्ट होती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन मूंग दाल की अगर हम बात करते हैं तो मूंग दाल जो होती है वो काफी अलग होती है। श्रोताओं, अगर आपको बताऊं तो मूंग दाल विटामिन B6 और विटामिन C, साथ ही बताऊं तो आयरन, फाइबर और ऐसे जो कई पोषक तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम मूंग दाल का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा तरीका बताऊं तो अगर आप रात भर भीगी हुई मूंग दाल का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर पर आपको कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हम सुबह खाली पेट भीगी मूंग दाल खाते हैं तो हम दिन भर एनर्जी से भरपूर होते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि इसका सेवन करने से हमारी जो स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों, अगर बताऊं तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, ऐसे में हमारे स्वास्थ्य को लेकर हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य को करते करते हम थोड़े से निराश हो जाते हैं, कभी कभार हम थक जाते हैं। तो श्रोताओं, इसकी वजह होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसका कमजोर होना। तो ऐसे में श्रोताओं, अगर आप मूंग की दाल का सेवन करते हैं खाली पेट तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है। कह सकते हैं कि इसका सेवन करने से हम कई प्रकार के संक्रमण और कई तरह की अलग अलग बीमारियों से भी बच सकते हैं श्रोता साथियों। साथ ही श्रोताओं, ये भी कहा जाता है कि ये पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी होती है। यानी कि दोस्तों, आपने अपनी दादी नानी से भी सुना होगा कि जब हमें कोई पाचन संबंधित समस्या होती है तो हमें मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि श्रोताओं, आपको बताऊं तो इसका सेवन करने से पेट आसानी से साफ हो जाता है और इसका नियमित सेवन करने से कब्ज और अपच की जो समस्या होती है, साथ ही जो गैस की समस्या होती है उससे भी निजात हमें मिल जाता है। साथ ही जो खून की कमी होती है वो भी दूर होती है। और अगर श्रोता साथियों, आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में भी आप मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि श्रोताओं, मूंग दाल के फायदों में वजन घटाने की बात भी कही गई है। आपको बताना चाहेंगे कि जब आप भीगी हुई मूंग की दाल का सेवन करते हैं श्रोता साथियों, तो इसका सेवन करना श्रोता साथियों आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो मुंह का स्वाद होता है वो चटपटा सा होता है और अभी हमें चटपटा खाने की ज्यादा आदत रहती है। तो ऐसे में श्रोता साथियों, आप इसे अलग तरीके से भी खा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कच्ची मूंग दाल खाना पसंद नहीं है दोस्तों, तो आप इसे उबाल भी सकते हैं। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक मिलाकर खा सकते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे में क्या होगा, इसके लाभ समाप्त नहीं होंगे, ये ऐसे खाने पर भी आपको लाभ दे सकती है। तो श्रोताओं, ये तो हमने मूंग दाल के फायदों को जाना। आगे कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से मूंग की दाल का उपयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। हाँ श्रोता साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मूंग दाल से बनने वाली इडली के बारे में। हाँ श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि रविवार के दिन कुछ चटपटा खाने का मन तो हमारा करता ही है, तो ऐसे में क्यों ना इस रविवार को हम इडली ही खाएं। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। यानी कि मूंग दाल के फायदों को तो आप जान ही गए, साथ ही जो इडली होती है वो खाने में भी बड़ी टेस्टी सी और दिखने में भी अच्छी होती है। तो मैं मूंग दाल की इडली की विधि के बारे में आपको जरूर बताऊंगी दोस्तों, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।

तो श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि गीत से पहले हमने मूंग दाल का सेवन हम किस प्रकार से करें और इसके क्या फायदे हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं ये तो बता दिया। अब यहीं पर बात आती है कि आज हम मूंग दाल के साथ कौन सा व्यंजन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने बता ही दिया कि आज मैं आपको बताऊंगी कि मूंग दाल से आप कैसे इडली बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मूंग की दाल की इडली बनाने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए होगी। तो दोस्तों, ये इडली जो है वो मूंग दाल, दही और वेजिटेबल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। आपको बताऊं श्रोता साथियों, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कप मूंग दाल, आधा कप दही, दो बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच सरसों, 8 से 10 कड़ी पत्ते, आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही आधा इंच अदरक जो कि कसा हुआ हो, साथ ही बताऊं तो आधा कप गाजर जो भी कसे हुए हो, साथ ही दो बड़े चम्मच हरी धनी पत्तियां जो कि बारीक कटी हुई होनी चाहिए, एक छोटा चम्मच नमक या फिर आप नमक स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं दोस्तों, साथ ही आधा छोटा चम्मच इनो भी आपको चाहिएगा। तो श्रोता साथियों, ये तो हम सामग्री के बारे में जान पाए। अब यही बात आती है कि हम इसको बना कैसे सकते हैं, यानी कि इसको बनाने की विधि के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको मूंग की दाल की इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मूंग की दाल को धोकर कम से कम 3 घंटों के लिए भिगो देना है। यानी कि दोस्तों, आप इसे रात में भी भिगो सकते हैं ताकि आप सुबह जल्दी बना लें। साथ ही मूंग दाल भीग जाने पर पानी निकाल लें, दाल को बिना पानी डाले मिक्सर जार में डालें और पीसकर चिकना पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को दोस्तों एक मिक्सिंग बाउल में आप डाल दें। अब आप एक कढ़ाई ले सकते हैं जिसमें तेल गरम करना है आपको। उसमें आप सरसों, कड़ी पत्ता और हींग डालकर भून लें। अब इस तड़के को मूंग का जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें डाल दें, साथ ही कद्दूकस किए हुए गाजर, हरी धनिया पत्ती, अदरक, हरी मिर्च, दही और साथ ही स्वाद अनुसार नमक इसमें डालें और अच्छी तरह से श्रोताओं जब तक ये मिल न जाए तब तक मिलाते रहें। अब श्रोता साथियों, इडली की प्लेट को तेल से ग्रीस कर लें, यानी कि उस पर तेल लगा लें। भाप देने से ठीक पहले बैटर में आप इनो मिलाएं। हाँ श्रोता साथियों, यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि आपको पेस्ट में पहले इनो नहीं डालना है। आपको सिर्फ कद्दूकस की हुई गाजर, हरी धनिया पत्ती, अदरक, हरी मिर्च, दही और नमक ही डालना है। इनो आपको भाप देने से पहले डालना है श्रोता साथियों। आपको बताऊं तो इनो में मिलाते वक्त 1 चम्मच पानी आपको डालना है और फिर बैटर को अच्छी तरह मिक्स होने तक आपको फेंटना है। दोस्तों, इस बैटर को ग्रीस की हुई इडली प्लेट में आप धीरे धीरे डालें। अब इसे जो इडली का कुकर आपने गैस पर चढ़ाया है उसे स्टीम करने के लिए रख दें और ढक्कन ऊपर से बंद कर दें। अब श्रोताओं, 10 से 12 मिनट तक आप इसे स्टीम यानी कि भाप में रहने दें। 10 से 12 मिनट बाद आप देखेंगे कि इडली बन चुकी है। अब श्रोताओं, इडली को इडली कुकर से बाहर निकाल लें और अब आप देखेंगे श्रोता साथियों कि आपकी इडली बनकर तैयार है। अब इसके बाद दोस्तों, आपको इडली को तुरंत हाथ नहीं लगाना है। इडली को 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देना है और चाकू की सहायता से आपको इडली निकाल लेनी है। तो दोस्तों, तैयार है हमारी स्वादिष्ट हेल्दी मूंग दाल की इडली। इसे आप गर्मा गर्म एक प्लेट में हरी चटनी या फिर सांभर के साथ परोस सकते हैं श्रोता साथियों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में मूंग दाल की इडली की व्यंजन विधि। मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जो विधि मैंने आपको बताई है आप उसे जरूर बनाएंगे श्रोता साथियों, और फिर हमें जरूर बताएंगे कि आपको वह विधि कैसे लगी श्रोता साथियों। तो आप ये बताने के लिए हमारा पता लिख लीजिए जिसके माध्यम से आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने जब यह इडली घर पर बनाई तो आपको कैसी लगी। तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर
हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नई व्यंजन विधि और स्वास्थ्यवर्धक विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अब आपकी दोस्त कशिश पाराशर को कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ दोस्तों, नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

पावर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। जी हाँ, हर किसी को संविधान का सम्मान करना चाहिए, सच की जीत हो, अन्याय का दमन होना चाहिए। बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि पिछले रविवार को कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने जाना था संविधान बोध और संविधानिक नैतिकता के बारे में, और जैसा कि हमने कहा था कि आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर उसके अंगीकृत होने तक कई ऐसी घटनाएं घटी जो आपकी प्रकृति में निहायत दिलचस्प थी। ये घटनाएं इतनी रोचक है जागृति जी कि इन्हें जानकर कोई भी सहज ही चौंक उठेगा। उदाहरण के लिए, इतनी विशाल और लंबी चर्चा के बाद बने संविधान का सर्वसम्मति से पारित होना, संविधान निर्माण के दौरान आम भारतीयों के सुझाव आमंत्रित किया जाना, संविधान की मूल प्रतियों को हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखवाया जाना, संविधान में 5000 वर्षों के इतिहास को चित्र के रूप में उकेरा जाना आदि, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में प्राय आम लोगों को जानकारी नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में हम हमारे श्रोता साथियों को बताने वाले हैं।
0: बिल्कुल साथियों, पंडित नेहरू ने आजादी के पहले कर दी थी आजादी की घोषणा। अंजलि, अगर इस पर बात करें तो भारत के आजादी के घटनाक्रम कई बार चुका देते हैं।
1: जी,
0: यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र संविधान सभा में पेश कर दिया था।
1: जी बिल्कुल,
0: 8 बिंदुओं की इस घोषणा पत्र की पहली घोषणा थी, ये विधान परिषद यानी कि संविधान सभा भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा जागृति जी कि हम कहते हैं कि हमारा ये दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र प्रजातंत्र होकर रहेगा। जब भारत को हम सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। इस घोषणा पत्र को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने खड़े होकर सहमति दी और स्वीकार किया।
0: जी हाँ बिल्कुल अंजलि, और आजादी से पहले ही स्वीकार कर लिए गए मूलभूत अधिकार। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूलभूत अधिकारों से गहरा संबंध रहा है।
1: जी हाँ,
0: 26 से 31 मार्च 1931 तक सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मूलभूत अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव पारित किया था। ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। साथ ही मूलभूत अधिकारों में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, समानता का अधिकार, सभी धर्म के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति और भाषा की संरक्षा की बात कही गई थी।
1: जी बिल्कुल,
0: साथ ही हम कह सकते हैं कि इसी तरह राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में लगान और मालगुजारी में कटौती, अलाप कर जूतों को लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज और सूदखोरों से सुरक्षा, गर्भावस्था में महिलाओं के लिए अवकाश और प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकार के अधीन रखने सरीके विशेष शामिल थे।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि इसके लगभग 26 साल बाद संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को अल्पसंख्यक समुदाय मौलिक अधिकार संबंधी समिति का गठन किया।
0: जी हाँ,
1: जब तक भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही बनाए गए और उन्होंने 23 अप्रैल 1947 को मौलिक अधिकारों का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। इस पर 19 अप्रैल 1947 को चर्चा भी शुरू हो गई और प्राथमिक स्वरूप पर 2 मई 1947 तक चर्चा भी हो गई। यह एक महत्वपूर्ण बात है जागृति जी कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के आजाद होने से लगभग 4.5 महीने पहले ही मूलभूत अधिकारों की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया जी हाँ, वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका के साथ में।
0: जी हाँ, इसी के साथ वर्ष 1895 से ही शुरू हुई अपना संविधान बनाने की कोशिश। साथियों, हमें लगता है कि भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से ही शुरू हुई, लेकिन तथ्य कुछ और भी है। वास्तव में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 यानी कि स्वराज बिल के नाम से पहला प्रारूप बनाया गया था।
1: जी हाँ,
0: ये प्रारूप किसने लिखा ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया अंजलि, लेकिन माना जाता है कि यह बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित था।
1: जी जी,
0: इस विधेयक के प्रस्तोता का मानना था कि हालांकि अभी भारतीय उन अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है जिनकी परिकल्पना इस विधेयक में की गई थी, लेकिन उनकी अपेक्षा भी थी कि भविष्य में भारत के लोग अपने देश की क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इस विधेयक में न्याय, संपदा, आश्रय, शिक्षा, मतदान, अभिव्यक्ति, ये सब अधिकारों का जिक्र किया गया था।
1: जी हाँ, इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 तैयार किया गया और इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के चुनाव हार जाने के कारण यह विधेयक रखा गया। इसके बाद वर्ष 1925 में सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की तरफ से पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपना संविधान तैयार करने की पहल हुई। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जागृति जी,
0: जी हाँ।
1: इसके बाद तेज बहादुर सप्रू, M.N. राय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आदि ने भी संविधान प्रारूप बनाए, यानी 50 से ज्यादा सालों तक यह पहल चली।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में, आगे जानने वाले हैं भारत का संविधान सर्वसम्मति से पारित कैसे हुआ, साथ ही 14 अगस्त 1947 की प्रतिज्ञा के बारे में।
1: जी,
0: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: भारत के सभी समूहों, प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सहभागी थी। सबसे पहले संविधान सभा ने 46 दिन तो इसी बात पर चर्चा बहस की कि हम किस तरह का संविधान बनाना चाहते हैं।
1: जी हाँ,
0: संविधान सभा ने कुल 165 दिन और संविधान की मसौदा समिति ने 141 दिन बैठकें की। इस तरह कुछ 266 दिन चर्चा संवाद वाद विवाद हुआ। इस दौरान संविधान के 3 प्रारूप बने और इसके मसौदे के एक एक अनुच्छेद पर 101 दिन चर्चा बहस हुई।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं जागृति जी कि सभा के सदस्यों ने संविधान के मसौदे पर कुल 7635 संशोधन समिति को भेजे। इनमें से 2473 संशोधन संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए।
1: जी हाँ।
0: और उन पर वाद विवाद हुआ। संविधान सभा की चर्चाओं, बहसों और भारत के प्रांतों से चुने गए 210 सदस्यों और रियासतों के प्रतिनिधि समूह में से 64 सदस्यों ने अपनी बात रखी जागृति जी। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में इस प्रक्रिया को हमेशा बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाएगा।
1: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि, ये तो आपने भारत का संविधान सर्वसम्मति से कैसे पारित हुआ उसके बारे में बताया, यही जानते हैं 14 अगस्त 1947 की प्रतिज्ञा के बारे में।
0: जी बिल्कुल
1: साथियों, 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे से संविधान सभा का सत्र आरंभ हुआ। इसके ठीक एक घंटे बाद भारत आजाद होने जा रहा था।
0: जी हाँ।
1: सबसे पहले आजादी के आंदोलन में त्याग और बलिदान करने वालों की स्मृति में मौन रखा गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने संविधान सभा में ये कहकर प्रतिज्ञा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है, ऐसे वक्त में पहला काम हमारा ये हो कि हम एक प्रण और एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। उन्होंने जो प्रतिज्ञा पढ़ी उसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद सभा के अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा अंतिम रूप में पढ़ी और स्वीकार की।
0: जी बिल्कुल साथियों, कहना चाहेंगे कि राष्ट्र ध्वज के रंग सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है। साथियों, अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग मुस्लिम और केसरी रंग हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है।
1: हाँ।
0: लेकिन जब संविधान सभा में तिरंगे से संबंधित प्रस्ताव रखा गया जागृति जी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कुछ लोग ध्वज के महत्व को न समझकर सांप्रदायिक रूप से सोचने लगे हैं और विश्वास करने लगे हैं कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का घोतक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब झंडे के बारे में विचार किया गया था उस समय इसके साथ कोई सांप्रदायिक चीज नहीं थी।
1: जी हाँ,
0: हमने झंडे के एक ऐसे नमूने पर विचार किया था जो सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए। हमने उस झंडे का विचार किया जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परंपरा का और परंपरा के मिश्रित रूप जो हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित है का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है कि यह झंडा साम्राज्यवाद का, किसी व्यक्ति पर अधिपत्य जमाने का प्रतीक नहीं है।
1: जी हाँ,
0: वह स्वतंत्रता का झंडा है और वह भी केवल हमारी स्वतंत्रता का ही नहीं, वरन उन समस्त मनुष्यों की जो भी इसे देखे स्वतंत्रता का चिन्ह है।
1: बिल्कुल अंजलि, सही कहा। इसी के साथ अगर राष्ट्र को पहला तिरंगा भेंट किया महिला समाज ने, अगर इस पर बात करें तो साथ ही 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की सदस्य श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्र को भारतीय महिलाओं की तरफ से तिरंगा भेंट किया था।
0: जी हाँ।
1: श्रीमती हंसा मेहता ने 74 महिलाओं के नाम पढ़े थे, जिनमें अमृत कौर, हन्नाहा सेन, लक्ष्मीबाई राजवाड़ी, गोशीबेन कैप्टन, अवंतिकाबाई गोखले, मुथु लक्ष्मी रेड्डी, जानकीबाई बजाज, रायवन तैयब जी, अबला बोस, असवाह हुसैन, कुत्सिया एजाज रसूल, मार्गरेट कजिन्स, मेमोबाई, मृदुला साराभाई शामिल थी। श्रीमती हंसा मेहता के पास अलग अलग समुदायों की 100 महिलाओं की सूची थी जो इस अवसर पर मौजूद रहना चाहती थी।
0: जी बिल्कुल
1: साथियों, ये एक भावनात्मक पल था। श्रीमती हंसा मेहता ने कहा कि इस परिस्थिति में ये उपयुक्त ही है कि पहली राष्ट्रीय पताका जो इस महिमा मंडित भवन पर सुशोभित हो उसे भारतीय महिला समाज एक उपहार की तरह प्रस्तुत करें।
0: जी बिल्कुल,
1: ये पताका हमारे महान भारत का प्रतीक है, ये सदा फहराती रहे और विश्व पर आज जो संकट की कालीमा छाई है उसमें उसे यह प्रकाश दे, इसकी छत्र छाया में रहने वाले प्राणियों को यह सुख और शांति दे। बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में, ढेर सारी बातों से हम हमारे श्रोता साथियों को अवगत करा पाए हैं। अगले रविवार को हमारी फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ अहम बातों के साथ में।
2: जी हाँ।

0: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
2: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
5: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
4: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो,
0: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है मानी दुआ पितानी उम्मीद मिसोरनी मुस्कान होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: तो भाइयों बहनों आ तो हती अमारी आज नी सभा हमें आशा करा कि आज नी सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या एने बल्ले आप अमने राय सुझाव आली शको अमारे अणा पता माते अमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान हमारो पिन कोड नंबर है 3270001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारू फोन नंबर है 9460051234 तो भाइयों बोनो आ तो हती अमारी आज नी सभा बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।

0: भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका।
1: आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता?
0: और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है।
1: पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं, ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तक की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, त्याग साहस और बलिदान की पहचान रामप्रसाद बिस्मिल है भारत की शान। उनसे मिलता है देश प्रेम का सम्मान।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए महापुरुष के जीवन के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने वाले हैं राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन परिचय के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: भारत की स्वतंत्रता का इतिहास ऐसे वीर सपूतों के बलिदान से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, इन महान क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक उत्कृष्ट कवि, लेखक, देशभक्त और समाज सुधारक भी थे।
1: बिल्कुल,
0: उनके जीवन का एक एक क्षण मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित था। उनका त्याग, साहस और देश प्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल,
0: राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था अंजलि, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती देवी था। परिवार सामान्य था लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। बचपन से ही राम प्रसाद तेजस्वी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। वे हिंदू, उर्दू और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। युवा अवस्था में ही श्रोता साथियों, उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत होने लगी।
0: बिल्कुल,
1: उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। चारों ओर अन्याय, शोषण और अत्याचार का माहौल था। जागृति जी, देश की यह स्थिति देखकर राम प्रसाद का मन व्यथित हो उठा था। उन पर आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समाज सुधार, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के सिद्धांतों को अपनाया। इसी के साथ श्रोता साथियों, धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास मजबूत हो गया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए केवल बातें नहीं बल्कि साहसिक कदम उठाने होंगे।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से ही बिस्मिल्ला तेजस्वी, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अध्ययन किया था। उनकी रुचि साहित्य और कविता में थी। किशोरावस्था में वे ही राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हो गए थे। श्रोता साथियों, आर्य समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं अंजलि, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के जीवन पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा था।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया जिसने उनके विचारों को नई दिशा दी। आर्य समाज ने उनके देश प्रेम, सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान की भावना विकसित की। इसी प्रभाव के कारण उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें तो युवा अवस्था में ही राम प्रसाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। उन्होंने अनेक युवाओं को संगठित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुना।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि उन्होंने कई देशभक्ति कविताएं लिखी जो युवाओं को जोश भरने का काम करती थी। उनकी रचनाएं लोगों को जागृत करती थी और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती थी।
0: जी हाँ
1: जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था और संगठन में अनेक युवा क्रांतिकारी

0: अगर आपको बताएं तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला एक महान कवि और लेखक भी थे। अंजलि, उन्होंने बिस्मिल्ला उपनाम से अनेक कविताएं लिखी थी। उनकी रचनाएं युवाओं में जोश और उत्साह भर देती थी।
1: जी जी।
0: उनकी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गई। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि इस कविता के मूल रचनाकार बिस्मिल्ला अजीमाबादी थे, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल्ला ने इसे स्वतंत्रता संग्राम में लोकप्रिय बनाया और ये उनके नाम से भी व्यापक से जुड़ गया। उनकी लेखनी में देशभक्ति, आत्मबल और बलिदान की भावना झलकती थी। वे मानते थे कि कलम और तलवार दोनों राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साधन है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि रामप्रसाद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड था। क्रांतिकारियों को अपने आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी।
0: जी हाँ।
1: इसलिए उन्होंने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी धन अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों से भयभीत हो गई और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। कुछ समय बाद रामप्रसाद और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार उन्हें कठोर दंड देकर क्रांतिकारी आंदोलन को दबाना चाहती थी, लेकिन जागृति जी बिस्मिल ने अदालत में भी अद्भुत साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उन्होंने किसी प्रकार की दया याचिका नहीं की और अपने विचारों पर अडिग रहे।
0: बिल्कुल अंजलि, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य केवल भारत को स्वतंत्र कराना है। जेल में रहते हुए भी रामप्रसाद बिस्मिल का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने आत्मकथाएं लिखी और अनेक प्रेरणादायी लेख लिखे। उनकी आत्मकथा आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जेल की कठिन परिस्थितियों में भी वे देश की स्वतंत्रता के सपने देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों को भी साहस और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा दी।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो रामप्रसाद बिस्मिल जागृति जी केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक उत्कृष्ट कवि भी थे। जैसा कि आपने कार्यक्रम में बताया था, अंग्रेजी सरकार ने रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनवाई। 19 दिसंबर 1927 को गोखरपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी के समय भी उनके चेहरे पर भय नहीं था, वे पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने चले गए। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें सिखाता है कि देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होता है।
1: जी हाँ।
0: वे हमें साहस, निष्ठा, ईमानदारी, राष्ट्रहित के सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन बताता है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसान किया जा सकता है।
1: हाँ।
0: आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे उनके बलिदान को लेकर बातचीत करें तो अंग्रेज सरकार ने रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई।
0: बिल्कुल।
1: फांसी पर चढ़ते समय भी उनके चेहरे पर भय नहीं था बल्कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने का गर्व था। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में देशभक्ति के गीत गाए और भारत माता की जय का उद्घोष किया।
0: बिल्कुल।
1: उनका बलिदान पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। श्रोताओं, उनके शहीद होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक तेज हो गया। रामप्रसाद बिस्मिल्ला का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे साहसी थे, अनुशासित थे, विद्वान थे और राष्ट्रभक्त थे। उनमें नेतृत्व क्षमता कुट कुट कर भरी थी अंजलि। वे मानते थे कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर, साहसी और राष्ट्रहित के लिए समर्पित बनने का संदेश दिया।
0: जी।
1: उनका जीवन ये सिखाता है श्रोता साथियों हमें कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं के लिए रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन एक आदर्श है। उनका संघर्ष बताता है अंजलि कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: युवा पीढ़ी उनके जीवन से देश प्रेम, साहस, अनुशासन, त्याग और समर्पण की सीख ले सकती है। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि राष्ट्र हित ही सबसे बड़ा धर्म है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन केवल स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि आत्मसम्मान, कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम की जीवंत मिसाल है।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने यह साबित किया था जागृति जी कि उम्र, साधन और परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति के बड़े लक्ष्य के सामने बाधा नहीं बन सकती। जिस दौर में अंग्रेजी शासन का भय लोगों के मन में गहराई तक बैठा हुआ था, उस समय बिस्मिल जैसे युवाओं ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे देश में नई चेतना का संचार किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल।
0: आज भले ही जागृति जी स्वतंत्रता की लड़ाई समाप्त हो चुकी हो, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अभी भी हमारे कंधों पर है। शिक्षा, ईमानदारी, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान और नागरिक कर्तव्यों के पालन के माध्यम से हम अपने देश को और मजबूत बना सकते हैं। और यही उन महान क्रांतिकारियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने एक बेहतर भारत का सपना देखा था।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे अमर सेनानी थे जिनका नाम सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। उनका जीवन देशभक्ति, साहस, त्याग और बलिदान का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। आज आवश्यकता है श्रोता साथियों कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें संदेश भी देता है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और राष्ट्र के हित में प्राप्त की जाए।
0: बिल्कुल।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज जब हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस लेते हैं तब हमें उन शहीदों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ये आजादी दिलाई थी।
0: बिल्कुल।
1: रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन युवाओं को यही प्रेरणा देता है कि सच्चा राष्ट्र प्रेम केवल नारों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने में है।
0: यदि हाँ।
1: प्रत्येक युवा अपने भीतर देशभक्ति, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और सेवा की भावना विकसित कर ले तो भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।
0: बिल्कुल।
1: हम रामप्रसाद बिस्मिल के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तथा एक सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन परिचय को, आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और ये बातें आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्र
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है बिखरे पलों को समेट लेना। जी हाँ दोस्तों, हर टूटा हुआ सपना अंत नहीं होता, कभी कभी वही नई शुरुआत बन जाता है। तो श्रोता साथियों, आज की कहानी उन युवाओं के नाम है जो जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं न कहीं खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी बेरोजगारी की चिंता, कभी रिश्तों का टूटना, तो कभी खुद पर भरोसा कम हो जाना। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर यही है कि इंसान अपने बिखरे पलों को फिर से समेटना सीख जाए। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे युवा की कहानी जिसने हार के अंधेरे से निकलकर उम्मीद की नई रोशनी बनाई। तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन मैं एक शिक्षाप्रद कहानी को लेकर आपके साथ उपस्थित होती हूँ। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक भी मैंने आपको बता दिया था कि कहानी का शीर्षक है बिखरे पलों को समेट लेना। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस तरह से कि एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था विवेक। विवेक बचपन से ही बहुत होशियार था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन माँ बाप का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। दोस्तों, विवेक भी दिन रात मेहनत करता था। गाँव के स्कूल से पढ़ाई करके उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया था। शहर उसके लिए एक नई दुनिया थी। ऊंची इमारतें थी, तेज रफ्तार जिंदगी, प्रतियोगिता और हजारों सपनों से भरी भीड़। शुरुआत में तो आप सबको पता है कि सब अच्छा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, कॉलेज की फीस, किराए का कमरा, खाने का खर्च, सब कुछ भारी पड़ने लगा। ऊपर से पढ़ाई का दबाव। विवेक अक्सर रात में जाकर सोचता था कि क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। जिस लड़के की आंखों में सपने चमकते थे, अब उन्हीं आंखों में डर और थकान दिखाई देने लगी थी। कहा गया दोस्तों कि मुश्किल इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाना सिखाती है। अब एक दिन विवेक का परीक्षा परिणाम आया। वो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गया। दोस्तों, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसके दोस्त आगे निकल रहे थे, रिश्तेदार ताने दे रहे थे और वो खुद को सबसे पीछे महसूस कर रहा था। दोस्तों, उसने पढ़ाई छोड़ने तक का फैसला लिया। फोन बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया। कभी कभी इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हार जाता है। विवेक के साथ भी यही हो रहा था। दोस्तों, उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी के सारे पल बिखर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन श्रोताओं, कहा गया है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी रास्ता दिखा ही देती है। उसकी माँ की बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसकी माँ गांव से शहर आई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। माँ ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? विवेक रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैं हार गया, मेरे सपने टूट गए, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तभी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, खेत में जब फसल बिखर जाती है तो किसान खेती छोड़ नहीं देता। वो फिर से मेहनत करता है, फिर बीज बोता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि अगली फसल जरूर अच्छी होगी। दोस्तों, विवेक चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी में बिखरे पलों को रोकर नहीं बल्कि हिम्मत से समेटा जाता है। श्रोताओं, ये बात विवेक के दिल में उतर गई। और कहते भी है कि हार का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन कोशिश छोड़ देना स्थायी हार बन जाती है। अगले दिन विवेक सुबह जल्दी उठा। कई दिनों बाद उसने सूरज की रोशनी को महसूस किया था। उसने तय किया दोस्तों कि अब फिर से वो शुरुआत करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह व्यायाम करना शुरू किया, मोबाइल का समय कम कर दिया, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले जो काम उसे बोझ लगते थे, अब वही काम उम्मीद बनने लगे थे। दोस्तों, अब वो समझ गया था कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलना ही बड़ी सफलता बन जाती है। हालांकि बदलाव आसान नहीं था दोस्तों, कभी मन टूटता, कभी पुराने डर वापस आ जाते थे। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि वो फिर से हार जाएगा, लेकिन अब उसने एक बात सीख ली थी, भागना समाधान नहीं है। जब भी वो कमजोर पड़ता, माँ की बातें याद करता और खुद से कहता, अगर जिंदगी बिखरी है तो उसे समेटने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। धीरे धीरे दोस्तों, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कॉलेज में उसने एक छोटे बच्चे को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उससे कुछ पैसे मिलने लगे। उसे सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि उसे खुद पर भरोसा वापस मिलने लगा था। और कहा भी गया है कि जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, दुनिया उसे गिरा नहीं सकती। तो दोस्तों, क्या है, समय बीतता गया, विवेक ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसने सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए मेहनत की थी। परिणाम आया और इस बार वो सफल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे दोस्तों, मेहनत के जीत के थे। वो समझ चुका था कि सफलता सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, सफलता तो वो ताकत है जो इंसान को टूट कर भी फिर खड़ा होना सिखाती है। धीरे धीरे विवेक गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। वो गांव जाकर बच्चों और युवाओं को पढ़ाने लगा। वो उनसे कहता था कि जिंदगी में हर किसी के कुछ पल बिखरते हैं,
लेकिन असली विजेता वही होता है जो उन पलों को समेट कर फिर आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आज का युवा बहुत दबाव में जी रहा है। करियर की चिंता है, सोशल मीडिया की तुलना है, परिवार की उम्मीदें हैं और भविष्य का डर है। इन सब के बीच कई युवा अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक असफलता हमारी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकती है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत समझिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है दोस्तों। समय खराब हो सकता है, लेकिन इंसान अगर हिम्मत न छोड़े तो समय भी बदला जा सकता है। जिंदगी में कभी ऐसा समय आए श्रोता साथियों, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे तो खुद को थोड़ा सा समय दीजिएगा। अपने अंदर की ताकत को पहचानिएगा, क्योंकि इंसान टूटता तभी है जब वह खुद पर विश्वास खो देता है। आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि उम्मीद की डोर थामे रखिए, बिखरे पल भी एक दिन खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ साल बाद विवेक अपने गांव के स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर आया, वही स्कूल जहां वो कभी फटी किताबों के साथ बैठा करता था। उसने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं भी टूटा था, बिखरा था, लेकिन मैंने खुद को हारने नहीं दिया। पूरा स्कूल दोस्तों तालियों से गूंज उठा था। उस दिन विवेक ने आसमान की ओर देखा, उसे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, धन्यवाद, तुमने हार मानने के बजाय खुद को फिर से समेट लिया। दोस्तों, कहानी हमें शिक्षा देती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी सपने टूटेंगे, कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने बिखरे पलों को समेटना सीख गए तो कोई भी तूफान हमें रोक नहीं पाएगा। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी बिखरेगी जरूर, लेकिन हिम्मत हो तो हर बिखराव को फिर से सजाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आगे भी कोई छोटी मोटी बातें रह गई वो आपसे मैं जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी कि बिखरे पलों को कैसे समेट लेना चाहिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कहानी तो मैंने आपको सुना दी थी और शिक्षा भी बता दी थी और कुछ छोटी मोटी बातें रह गई थी। तो दोस्तों छोटी मोटी बातें ये है कि ये कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी में आने वाली परेशानियां हमें खत्म करने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर युवा अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से जरूर गुजरता है जब उसे लगता है कि सब कुछ बिखर गया है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की उम्मीदें, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, तो कभी सपने भी टूट जाते हैं। ये सब इंसान को अंदर से कमजोर कर देते हैं दोस्तों, लेकिन यही समय इंसान को अपनी असली ताकत पहचानने का मौका भी देते हैं। विवेक की तरह कई युवा एक असफलता को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि असफलता सिर्फ एक घटना होती है, इंसान की पहचान नहीं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो मेहनत और धैर्य से दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है दोस्तों कि परिवार और अपनों का साथ इंसान को टूटने से बचा सकता है। कभी कभी माँ बाप के छोटे छोटे शब्द भी जिंदगी बदल देते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देते हैं तब अपने लोगों का विश्वास उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। युवाओं को समझना होगा श्रोता साथियों कि दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति की मंजिल अलग होती है और हर किसी का संघर्ष भी अलग होता है। किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा समझना सही नहीं है। जो व्यक्ति धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता है श्रोताओं, वही एक दिन सबसे मजबूत बनता है। ये कहानी हमें अनुशासन का महत्व भी सिखाती है। छोटे छोटे अच्छे बदलाव जैसे समय पर उठना, मेहनत करना, सकारात्मक सोचना और खुद पर विश्वास रखना धीरे धीरे जिंदगी को बदल देती है। बड़ी सफलता श्रोता साथियों एक दिन में नहीं मिलती बल्कि रोज की छोटी कोशिशों से बनती है। और सबसे जरूरी बात ये दोस्तों कि जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना आए, उम्मीद कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि टूटे हुए सपने भी दोबारा पूरे हो सकते हैं अगर इंसान मेहनत और हिम्मत का साथ न छोड़े। जो युवा अपने बिखरे हुए पलों को समेटना सीख जाते हैं वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए श्रोता साथियों आज जरूरत इस बात की है कि युवा हार से डरे नहीं बल्कि उससे सीखे। गिरना गलत नहीं है श्रोता साथियों, लेकिन गिरकर हमेशा जमीन पर पड़े रहना गलत है। अगर इंसान हर मुश्किल के बाद फिर उठना सीख जाएगा तो जिंदगी का कोई भी तूफान उसे रोक नहीं सकता। जब जिंदगी बिखर जाए श्रोता साथियों, तब रोने के बजाय खुद को संभाल लेना। जब सपने टूट जाए तब उम्मीद की नई शुरुआत कीजिएगा। जब रास्ते कठिन लगे तब याद रखिए, सबसे सुंदर कहानियां अक्सर सबसे कठिन संघर्षों से ही जन्म लेती है। हिम्मत रखने वाले युवा कभी पूरी तरह हारते नहीं है दोस्तों, वे हर हार से नई शुरुआत करना सीख जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि बिखरे हुए पलों को समेटना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है। और ये भी कहा गया है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही चमकदार होगी। तो दोस्तों ये थी कहानी और छोटी मोटी बातें। उम्मीद है कि आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और आप भी अपने बिखरे हुए पलों को फिर से समेटेंगे और अपने जीवन में आनंद और उत्साह से भर जाएंगे और अपने जीवन को एक नए लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से श्रोता साथियों विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय उचला है विदा लेने का। पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी ताकि आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई कथा कहानी में, शिक्षा प्रद प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भाई, अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे, आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
2: होवे, न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तकीस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो, स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे, जय वरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ बच्चों फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते ही हैं कि हम हर रविवार को आपको कुछ नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं, तो आज भी बच्चों मैं हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम में कुछ नई कहानियों के साथ में। वो कहानियाँ कौन सी होने वाली है बच्चों, ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बाकी रह गया है बच्चों। वो क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। हाँ बच्चों, आपने सही पहचाना, गीत सुनने का। तो शुरुआत में बच्चों पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज के कार्यक्रम में हमारी कौन सी कहानियाँ होने वाली है। तब तक के लिए बच्चों आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में और सुनते रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM।

वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों, गीत तो यहाँ पर हमारा पूरा हो गया और बहुत प्यारा सा गीत भी रहा ये तो अब मुझे आपको ये बताना होगा कि आज के कार्यक्रम में हमारी कौन सी कहानियाँ होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी पहली कहानी के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में हमारी जो पहली कहानी होने वाली है वो थोड़ी सी अनोखी है। जैसा कि बच्चों, आपने अकबर और बिरबल का नाम तो सुना ही होगा। बच्चों सुना है ना, तो आप क्या जानते हैं कि दोनों में से बुद्धिमान ज्यादा कौन था? आज की इस कहानी से आप ये समझ जाएंगे कि अकबर और बिरबल में ज्यादा बुद्धिमान कौन था। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है हरे घोड़े की कहानी। हाँ दोस्तों, हरे घोड़े की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि एक शाम को राजा अकबर अपने प्रिय बिरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर करने के लिए निकले। बच्चों, वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भी भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। बच्चों फिर क्या हुआ, ऐसे में राजा अकबर को जाने क्या सोचा कि उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। हाँ बच्चों, ऐसा राजा अकबर ने कहा। इस बात से राजा व बिरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बच्चों, राजा चाहता था कि बिरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बिरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बच्चों, बिरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। फिर क्या हुआ बच्चों, 8वें दिन बिरबल दरबार में राजा के सामने पहुँचे और बोले, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने जब ये सुना बच्चों, तो उन्होंने

बच्चों ये सुनकर राजा थोड़ा सा हैरानी में आकर बिरबल को देखने लगा। तब बिरबल ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होगी। तब राजा अकबर बिरबल की यह बात सुनकर खुश हो गए और यह मान गए कि बिरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की पहली कहानी, हरे घोड़े की कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन कार्य में लग जाना चाहिए ताकि हम उस कार्य को मुमकिन कर सकें। यानी कि बच्चों हम उस कार्य को कर नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं और वो कार्य हमारे लिए आसान हो सकता है। जैसा कि बच्चों महाराज अकबर ने तो बिरबल को बहुत बड़ा कार्य दिया था कि उसे 7 दिन के अंदर हरे घोड़े लाने हैं और ये बात वे दोनों ही जानते थे कि हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है। लेकिन बच्चों बिरबल ने दिमाग लगाया और उसने राजा अकबर की बात सुनकर उन्हें ये समझा दिया कि सच में हरे घोड़े आखिर होते ही नहीं हैं। तो बच्चों ये कहानी तो हमारी पूरी हो गई। तो मुझे अब आपको दूसरी कहानी के बारे में बताना होगा। तो दूसरी कहानी का नाम है नन्ही लाल चुन्नी। हाँ बच्चों, तो इस कहानी में क्या होने वाला है ये हम जरूर जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने अकबर बिरबल की हरे घोड़े की कहानी के बारे में जाना था, और गीत से पहले मैंने आपको हमारी दूसरी कहानी का नाम तो बता ही दिया था बच्चों, कि हमारी दूसरी कहानी होने वाली है नन्ही लाल चुन्नी की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी में क्या होने वाला है अगर मैं ये आपको बताऊं, तो एक समय की बात है बच्चों, जब एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपनी माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार किया करती थी। बच्चों, उसकी दादी गांव की दूसरी ओर रहती थी, जो कि रास्ता जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का हुड तोहफे में दिया, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड, यानी कि नन्ही लाल चुन्नी के नाम से बुलाते थे। बच्चों, नन्ही लाल चुन्नी अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। वह ज्यादातर समय वहाँ ही रहती थी और फिर अपने घर चली आती थी। बच्चों, दादी भी उस बच्ची को बहुत पसंद करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इस वजह से वह उसे ज्यादा नहीं मिल पाती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था बच्चों। तभी उसे यह पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही हैं। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुँची और उनसे पूछा कि माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हैं? इस पर बच्चों, नन्ही लाल चुन्नी की माँ ने कहा, बेटा, मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए ले जा रही हूँ। यह सुनकर बच्चों, वो बच्ची खुश हो गई और माँ से कहने लगी कि माँ, क्या ये भोजन और दवाइयाँ दादी के लिए मैं लेकर जाऊँ? इससे मुझे उनसे मिलना भी हो जाएगा। बच्चों, लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ इस बात के लिए राजी हो जाती है और उससे भोजन और दवाइयों की थैली देकर कहने लगती है, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे, सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। बच्चों, ये सुनकर वो बच्ची अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, मैं सीधे दादी माँ के घर ही जाऊंगी। इतना कहकर वह छोटी बच्ची ने अपनी दादी का दिया हुआ हुड पहना और माँ को बाय बाय कहकर जंगल के उस पार गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। बच्चों, वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ कि जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसकी टोकरी में से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िये को जगा दिया। बच्चों, भेड़िये की नजर उस छोटी बच्ची पर जा पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है। बच्चों, भेड़िया तुरंत उस छोटी बच्ची के पास पहुंचा और उसे कहा, कैसी हो प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िये का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई बच्चों, लेकिन फिर डरते हुए उसने कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये भोजन आपको नहीं दे सकती, यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो जंगल के उस पार अकेले रहती है। इसके बाद बच्चों, उस छोटी बच्ची ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िये को देते हुए कहा, ये लीजिए, आप ये खा लीजिए। बच्चों, भेड़िये ने उस बच्ची के हाथ से सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगल लेता हूँ, फिर बाद में इसे निगलूंगा, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा, ऐसा भेड़िये ने सोचा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि भेड़िये ने उस नन्ही बच्ची से कहा, अरे सुनो, जरा रुको और मेरी बात तो सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। बच्चों, यह सुनकर छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है और भेड़िये से कहने लगती है, सच में, पर कैसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी ठीक कैसे होंगी? बच्चों, इस पर भेड़िये ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें वो तरीका जरूर बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी। इन स्ट्रॉबेरीज में जादुई शक्तियाँ हैं, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। बच्चों, भेड़िये की ये बात सुनकर छोटी बच्ची ने कहा, अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ले आती हूँ। इतना कहकर बच्चों, वह नन्ही लाल चुन्नी
स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चालाक भेड़िये ने योजना बनाई बच्चों कि पहले दादी माँ के घर चलते हैं, फिर उसके बाद उस बच्ची को देखते हैं। दरअसल बच्चों भेड़िये ने ये अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर उस नन्ही लिटिल हुड को निकलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ के घर की ओर चल पड़ा। बच्चों दादी के घर पहुँच कर भेड़िये ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही थी। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जाग गई और भेड़िये को देखकर वो थोड़ा चौंक गई। उसने भेड़िये से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर भेड़िये ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया नहीं माना और वह दादी माँ को निगल गया। बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि जब वह छोटी बच्ची स्ट्रॉबेरीज लेकर गाना गुनगुनाते हुए दादी के घर पहुंची, तो वहाँ पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर के अंदर आ जाओ। बच्चों यह आवाज सुनकर उस बच्ची को थोड़ा आश्चर्य होता है। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज थोड़ी बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने बच्चों गेट खोला और घर में घुस गई। यहाँ उसने देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा था। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी ओ दादी आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है। इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनकर बच्चों वो छोटी सी नन्ही बच्ची अंदर आ गई। फिर उसने कहा, अच्छा लेकिन आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं, पहले तो ये ऐसे नहीं थे। इस पर फिर से भेड़िये ने कहा, अरे मेरी बच्ची मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह सुन पाऊँ, इसलिए मैंने अपने कान बड़े करवा लिए हैं। इसके बाद बच्चों उस बच्ची ने पूछा, तो दादी आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई। इस पर दादी ने कहा, बेटा वो इसलिए ताकि मुझे तुम्हें देखने में परेशानी न हो। इसके बाद फिर से उस बच्ची ने पूछा, अच्छा तो फिर ये हाथ ये क्यों इतने लंबे हो गए। इस पर दादी ने कहा, ये हाथ तुम्हें गले लगाने के लिए लंबे हुए हैं मेरी बच्ची। बच्चों ये सुनकर उसे फिर से थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए। इस सवाल के जवाब पर भेड़िया उसके सामने आ गया बच्चों और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। बच्चों इतना कहते ही भेड़िया उस बच्ची की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगल गया। इसके बाद बच्चों भेड़िया दादी की पलंग पर सो गया और जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। तभी एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था, जहाँ उसे जोर जोर से खर्राटे की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह रुक गया। उसने देखा कि खर्राटे की आवाज दादी माँ के घर से आ रही थी। वह घर के अंदर घुस गया, जहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया दादी माँ के पलंग पर सोया हुआ था। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िये ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िये को सबक सिखाने की तरकीब सोची। वह कैंची लाया और भेड़िये का पेट काट कर दादी माँ और उस नन्ही बच्ची को बाहर निकाल लिया। इसके बाद लकड़हारे ने तुरंत उस भेड़ियों के पेट में बड़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माँ ने उसका पेट सिल दिया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि भेड़िये के पेट से बाहर निकलते ही नन्ही लाल चुन्नी ने सबसे पहले अपनी दादी माँ से पूछा कि दादी माँ आप ठीक तो है ना, उस भेड़िये ने आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। बच्चों इस बात पर दादी माँ ने कहा, नहीं मेरी बच्ची मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद दादी माँ वह नन्ही बच्ची और लकड़हारा तीनों घर के दरवाजे के पीछे छिपकर दुष्ट भेड़िये की नींद से जागने का इंतजार करने लगे। फिर क्या हुआ बच्चों, कुछ देर बाद भेड़िया नींद से जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट काफी भारी है। उसने सोचा कि शायद उसने दादी माँ और उस बच्ची को निगला है, इस कारण उसका पेट भारी हो गया है। इसके बाद वह नदी किनारे पानी पीने के लिए निकल गया। बच्चों जैसे ही भेड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे नीचे झुका, वह नदी में ही जा गया। इसके बाद दादी माँ वह नन्ही बच्ची
और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। बच्चों घर पर पहुंचकर उस नन्ही बच्चे ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी। साथ ही उसने अपनी दादी माँ की जान बचाने के लिए लकड़हारे का शुक्रिया भी अदा किया। फिर तीनों ने एक साथ हंसी खुशी पूरा दिन बिताया और मजे से बैठकर चॉकलेट केक खाया। तो बच्चों, ये थी हमारी प्यारी सी कहानी नन्ही लाल चुन्नी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और किसी भी अजनबी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से बच्चों हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। इन कहानियों के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरीके से ये जान गए कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है, और पहली कहानी के माध्यम से हम ये जान पाए थे कि हमें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर किसी भी कार्य को असंभव होते हुए भी संभव बनाना है। तो बच्चों, कहानियाँ तो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, जगाओ जल्दी अपने मन को, लक्ष्य पर उसे लगाना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब हमें भी दौड़ना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे, बढ़कर आगे अब जादू करना ही होगा। केवल सोचने से मंजिलें पास नहीं आती, कुछ करके सपनों को पाना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब हमें दौड़ना ही होगा। कब तक खुद के जीवन से हम खेलेंगे, अब कम समय में अधिक करना ही होगा। सामने दरिया बहुत है पार करने को, अब तो तैरने का हुनर सीखना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब हमें दौड़ना ही होगा। आस यही है कि हमें पाना है, ए मंजिल तुम्हें गले लगाना ही होगा। तू दूर है हमसे, यह अभी का सच है, हमारे कदमों को तुम्हें कल चूमना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब तुम्हें दौड़ना ही होगा। कल का सूरज ढल गया तो क्या, आज उगता सूरज बनना ही होगा। काले बादल का घूंघट सामने है तो क्या, घूंघट को उठाकर मंजिल को पाना ही होगा। दुनिया चल पड़ी है, अब तुम्हें दौड़ना ही होगा।

0: साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं। तो आज भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत अवश्य जुड़ेंगे। उनके माध्यम से हम ढेर सारी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन के कुछ अहम पन्नों को। सर नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से आज जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान जो है वो हर रविवार को आता है और इसमें हम मुख्य अतिथि को कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ते हैं। तो सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं मूलतः उज्जैन शहर का रहने वाला हूँ।
0: जी जी।
1: अभी वर्तमान में मैं उदयपुर में रहता हूँ और उदयपुर में रह करके विकास कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया आपके परिचय में कि आप विकास कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो सर सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन किस तरीके से बीता, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी का जो बचपन है वो अलग अलग तरीके से बीतता है, क्योंकि किसी के जीवन में सुख, किसी के जीवन में दुख, तनाव, अलग अलग चीजें आर्थिक स्थिति के तौर पर सभी के जीवन में होती है। तो ऐसे में आपका बचपन किस तरीके से बीता, मैं ये जानना चाहूंगी।
1: मेरा बचपन का जहाँ तक सवाल है, एक सामान्य बचपन रहा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं आए और बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा लविश भी नहीं रहा, लेकिन मैं एक सामान्य जीवन जिया। मेरे पिताजी जो है सरकारी अध्यापक रहे और घर का सबसे बड़ा बच्चा होने की वजह से मुझे जिम्मेदारियाँ भी थी और कहें तो कुछ स्वतंत्रताएँ भी थी।
0: जी जी।
1: और तो मैं उज्जैन में रह करके मेरी पढ़ाई हुई है। शिप्रा के तट पे खेलना, जाना, नदी में तैरना, ये सब बचपन की यादों का हिस्सा है।
0: जी बिल्कुल।
1: जो अपने मित्रों के साथ में मैं करता रहता था। और उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है प्रसिद्ध, उसी के पास में उसके प्रांगण में खेलते हुए ही हमने अपनी पढ़ाइयाँ की है। यही हमारा पढ़ाई का बैकग्राउंड है।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत अच्छी तरीके से और सरलता पूर्वक पूरी तरीके से बीता, तो यही सर अब मैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगी कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, पढ़ाई का जो आपका सफर था वो कैसा रहा, क्या उसमें कोई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा?
1: मुझे मेरी पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा या कहे कि मेरी पूरी पढ़ाई उज्जैन नगरी में हुई है। कक्षा 2 से लेकर के मैंने अपनी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जियोलॉजी सब्जेक्ट में किया और ये सभी मेरे जो है उज्जैन के में ही हुए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा। ये ज़रूर था कि मेरा शायद घर से मेरा कॉलेज बहुत दूर होता था, लेकिन मित्रों ने आने जाने में हमेशा मदद किया।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और उन्हीं की बदौलत मैं पढ़ पाया।
0: जी बिल्कुल सर। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो पढ़ाई का क्षेत्र है वो उज्जैन में ही रहा और आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। यही सर मैं आपके घर परिवार के बारे में जानना चाहूंगी कि माता पिता का किस तरीके से आपको पढ़ाई को लेकर और अन्य जो चीजें रहती हैं जो बचपन से ही सीखने की जरूरत होती है, उनको लेकर क्या सपोर्ट रहा?
1: पूरा सपोर्ट रहा। मुझे अपने माता पिता से पढ़ने के लिए काफी वो रहा, मतलब कहें कि मेरे पिताजी तो खुद ही प्राइमरी अध्यापक थे, तो मेरी प्राथमिक शिक्षा में उनका बहुत योगदान था। और साथ ही ये था कि मेरी माता जी ने, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरी माताजी भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाइयाँ करती थी।
0: जी जी।
1: तो उनकी जब पढ़ाई चलती थी तो उनकी पढ़ाई से मेरे को भी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिलती रहती थी, तो इसलिए पढ़ाई का माहौल पूरा हमारे घर में रहा। जब मैं पढ़ रहा था तो चूंकि माँ भी पढ़ रही थी तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और पिताजी भी पढ़ाते थे तो चलता था, तो पढ़ना ही खेलना है और खेलना ही पढ़ना है।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से आपके घर परिवार के बारे में और ढेर सारी जानकारी बताई है, यही मैं आपके बचपन की हॉबीज के बारे में जानना चाहूंगी कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे बड़े होकर, और क्या अभी जिस क्षेत्र में आप हैं क्या आपका सपना वही था?
1: शायद ऐसा विशेष रूप से हम जिस समय में बड़े हुए वहाँ सपने करियर को लेकर के ज्यादा सपनों का बात तो उस समय नहीं चलता था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और चुनाव का इतना बड़ा माहौल नहीं होता था हमारे समय में। दो ही चुनाव होते थे कि आपने गणित लिया है तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, और आपने कोई और सब्जेक्ट लिया है तो फिर आपका फील्ड अलग रहेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो चूंकि मैंने तो बायोलॉजी लिया था तो कहीं ना कहीं मेरा जीव विज्ञान से जरूर संपर्क था, और ये था कि मैं अपने घर में, हमारा एक बढ़िया बगीचा था जो मेरी दादी मेंटेन करती थी, तो हमारे घर के यहाँ पे एक वो के परंपरागत रूप से सब्जियों की खेती और ये सब होती थी, और मुझे लगता है कि भले ही मैं पढ़ाई कुछ कर रहा था लेकिन साथ साथ ही जो अभ्यास चल रहे थे वो पोषण के आसपास चल रहे थे।
0: जी जी,
1: जो कि मेरे आज के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो वो सीधी सीधी पढ़ाई की बात करें तो शायद उसके साथ लिंक होता नहीं दिखता है, लेकिन आप जब बड़े हो रहे हैं उस समय आसपास में जो पढ़ रहे हैं उससे जरूर संपर्क बनता है।
0: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, तो सर अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अभी जिस पद पर हैं, जिस तरीके से आप विकास के कार्य कर रहे हैं, ये कार्य करना बहुत कठिन होता है, तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं और किस तरीके से उन समस्याओं से निपटने के लिए आप सभी लोगों को जागरूक करते हैं?
1: मुख्य रूप से अभी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि अपने पोषण को लेकर के जानकार होते हुए भी अनजान सा है। कई सारे ऐसे मिथ हैं जो कि लोगों के दिमाग में या तो गूगल के माध्यम से या अन्य प्रसारण माध्यमों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि गलत जानकारी भी मिल रही है, और गलत जानकारी के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है आधा अधूरा ज्ञान लेकर के या नीमकीम जैसा खतरा ज्ञान जैसा हो जा रहा है, तो वो लोगों को परेशान कर रहा है। और मुझे लगता है कि पोषण के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय की।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर पोषण को लेकर हम बात करते हैं तो अभी के समय में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में माता पिता जो बच्चों की परवरिश करते हैं तो बचपन से ही किस तरीके से माता पिता को अपने बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है, और अभी के समय में हम जो युवा साथियों को देख रहे हैं उनका अधिकतर जो खान पान है और जो उनकी जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: इसमें ये जरूर है कि माता पिता को बच्चों के पोषण का ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखने के साथ साथ ये भी है कि समय की मांग ये कहती है कि कुछ बदलावों की भी आवश्यकता होती है। हर पीढ़ी के समय कुछ बदलाव होता है, खान पान में बदलाव होता है, दूसरी संस्कृतियों के साथ में जब मिलन होता है तो आपके खान पान में बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं माता पिता का ये जिम्मेदारी बन जाता है कि वो पोषण को ध्यान में रखते हुए कैसे दोनों संस्कृतियों का मिलन करे, या ताकि उससे जो खान पान है उसको उसी रूप में देखा जा सके। जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो बच्चे जो है बर्गर पिज्जा इस दिशा में जा रहे हैं,
0: जी जी बिल्कुल,
1: है ना, कई उनको बाजार के खाने की वो रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारी रसोइयों में भी नवाचार करने की जरूरत है कि हम अपनी जो डिशेज हैं, अपने जो सांस्कृतिक जो खान पान है उनको उन नए रूप में कैसे ला करके बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: है ना, जैसे कि बच्चे सेजवान राइस ढूंढ रहे हैं, अब सेजवान राइस अपने आप में एक अलग किस्म का मसाला है, तो हम हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के वो हैं, तो क्या हम इस तरह के नवाचार करके उनको उनके टेस्ट के करीब ले जा सकते हैं ताकि पोषण भी मिले और उनका स्वाद भी बना रहे।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने पोषण को लेकर ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो यही युवा साथियों को जीवन शैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है, ऐसे में अगर हम विकास की बात करें या कोई और चीज को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे युवा साथियों की होती है, लेकिन अभी के समय में हमारे जो युवा हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर जा रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया में एक अलग ही मग्न हो गए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे?
1: एक्चुअली समय, अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है उसमें पीढ़ियों के बीच में संवाद कम हो गए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: है ना, युवा अपने मतलब जो है या कहें कि पिताजी या माता के साथ में उनका संवाद बहुत सीमित हो गया है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा वहाँ काम है, मेरा यहाँ काम है, जो बैठ करके जो समय बिताने की बात है या तो दादा दादी के साथ में या नाना नानी के साथ में, जिसमें कि हम एक्चुअली परंपरागत ज्ञान को एक दूसरे पीढ़ी तक ले जा सकें, वो संवाद का अभाव हो गया है।
0: जी बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है कि ये काम चूंकि युवा साथियों का जो है, ये युवा साथियों के मदद से ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है, और युवा साथियों की ये जिम्मेदारी बन सकती है कि वे अपने अपनी परंपरा के ज्ञान को टटोले, अपने पिता के माध्यम से, अपनी माता के माध्यम से, अपना नाना नानी के माध्यम से, तो समय निकाले और अपने बुजुर्गों के ज्ञान को आदर दें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें,
0: क्योंकि
1: इसके पहले कि वो गुम जाए।
0: जी बिल्कुल। तो सर, इन सारी चीजों के लिए हम किस तरीके से अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं?
1: इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे पोषण की बात करें तो हम अपने माता पिता के साथ में या अपने दादा दादी के साथ में पोषण के ऊपर चर्चा करें।
0: जी जी।
1: पुराने खाना पान के बारे में चर्चा करें कि हम उन खान पानों को समझने का प्रयास करें।
0: जी जी।
1: और स्वयं भी जानने की कोशिश करें।
0: जी
1: बिल्कुल। एक्चुअली इसमें हो ये रहा है कि समय के अभाव के नाम पे हम एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर पा।
0: जी बिल्कुल सर।
1: और शायद ये काम युवा आगे आके कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में आपने आपकी बचपन से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, साथ ही विकास को लेकर और बच्चे और युवा साथियों के लिए क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं, उनको लेकर ढेर सारी जानकारी से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो है वो खेलें और अपने जीवन को खोजने का प्रयास करें।
0: जी बिल्कुल।
1: और अपने जीवन को अपनी नजर से भी खोजें, अपने माता पिता की नजर से भी खोजें, अपने दादा दादी नाना नानी की नजर से भी खोजें।
0: जी जी।
1: और उससे अगर वो ये तीन पीढ़ियों की नजर से खोजेंगे तो उनको जीवन जीने का आनंद आएगा।
0: जी बिल्कुल। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद, आपने भी मुझे यहाँ वागड़ रेडियो में श्रोताओं से रूबरू होने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, साथ ही युवा साथियों को लेकर, बच्चों को लेकर और अभिभावक को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सारी भी बातें जानी। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारे जो विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए थे उनकी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से मैं विदा लेना चाहूंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM
4: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में
5: साथियों अहिंसा के बिना सत्य का अनुभव नहीं हो सकता अहिंसा का पहला सिद्धांत हर अमानवीय चीज के प्रति असहयोग करना है
6: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में।
1: जी हाँ।
0: जैसा कि कशिश पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हम जान पा रहे थे सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में,
1: बिल्कुल
0: इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं। तो श्रोता साथियों, 1940 के बाद उनका दावा उड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। मुसलमानों को उनका अलग देश मिलना चाहिए। जिन्ना एक युक्ति में लेते थे कि अपने कल्पना के देश पाकिस्तान के विषय में वे कभी स्पष्ट चित्र नहीं बनाते थे।
1: बिल्कुल।
0: सामने वाला पक्ष यदि कशिश इस बाबत कोई निपटारा करने को तैयार हो तो उनकी मांग उससे एक कदम आगे बढ़ती। जितना सामने वाले पक्ष ने स्वीकार कर लिया हो उतना वे कब्जे में कर लेते।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, वे अपने अनुकूल स्थान व तिथि पर हमेशा मिलना तय रखते और अगर किसी मामले में उलझन महसूस करते तो तुरंत कह देते कि मुझे अपनी काउंसिल से आदेश लेना पड़ेगा। यह बात सर्वविदित थी कि जिन्ना ही मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा थे। कार्यकारिणी या काउंसिल का आदेश लेने के बहाने वे मात्र अतिरिक्त समय हासिल कर लेते थे।
1: जी हाँ अंजलि जी, हम देखते हैं साथियों कि हिंदू और मुस्लिमों के दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को आखिरकार जिन्ना और मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे का आधार बनाया। परंतु दोस्तों, देश में दो अलग अलग राष्ट्र हैं ये बात लीग ने अपने लाहौर प्रस्ताव में पहली बार 1940 में कही। इससे वर्षों पूर्व कट्टरपंथी और हिंदुत्ववादियों ने तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर ही दिया था अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: वही 1923 में अपने ग्रंथ हिंदुत्व में श्री विधा सावरकर ने यही सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
0: जी जी।
1: और फिर 1937 में हिंदू महासभा के एक अध्यक्षीय भाषण में यही बात फिर से जोर देकर कही गई थी। हम देखते हैं कि गांधी जी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का आखिर तक श्रोता साथियों विरोध किया था। वे कहते थे कि हिंद के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज तो इस देश में ही जन्मे थे।
0: बिल्कुल।
1: धर्म बदलने से किसी का राष्ट्र कैसे बदल सकता है। कांग्रेस ने दोस्तों परिस्थितिवश बंटवारा स्वीकार किया था, पर स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान किसी एक धर्म पर आधारित राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि संप्रदाय निरपेक्ष ही बनाया था।
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जिस बैठक में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के दोनों प्रस्ताव नामंजूर कर दिए थे, उसी बैठक में लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का संकल्प घोषित किया था।
1: बिल्कुल।
0: इस बारे में श्रोता साथियों, जिन्ना ने अपनी काउंसिल के सामने दावा किया था कि ब्रिटिश सरकार के पास अपनी फौजें हैं और कांग्रेस के पास अपना सविनय अवज्ञा का शस्त्र है।
1: जी जी।
0: वैसे ही अपने पास भी अपनी पिस्तौल है, उसे उपयोग में लाने का समय अब आ चुका है। लीग काउंसिल के दूसरे सदस्यों ने तो खुली भाषा में हिंसा के इस्तेमाल की धमकी दी थी।
1: बिल्कुल।
0: 16 अगस्त 1946 का दिन जो है वो लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। लीग के आदेश के मुताबिक कलकत्ता में उस समय जबरदस्त दंगे भड़क उठे थे। कह सकते हैं कशिश कि जिसे देश ने द ग्रेट कलकत्ता, किलिंग्स कलकत्ता के कत्ले आम के रूप में जाना।
1: बिल्कुल।
0: उस समय से शुरू होने वाले हिंसा के इस दावानल ने उत्तर भारत को हिंसा की आग में झोंक दिया। कलकत्ता

0: लोगों ने चुन चुन कर उस परिसर में ऐसे लोग भी आमंत्रित किए थे जिनके साथ समाधान हो ही न सके।
1: जी हाँ,
0: अंतिम कैद से छूटने के बाद गांधी जी ने साथियों स्वयं मांग करके जिन्ना के साथ मुलाकात भी रखी थी, परंतु श्रोता साथियों 16 दिनों के प्रयास के बावजूद भी उनको उसमें सफलता नहीं मिल पाई।
1: जी हाँ,
0: जिन्ना देश के टुकड़े करके अलग पाकिस्तान बनाने से कम कुछ कर लेने को तैयार नहीं थे और गांधी जी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: हम जानते हैं साथियों कि स्वतंत्रता प्राप्ति से 10 वर्ष पूर्व प्रांतीय स्वराज के समय अंग्रेज सरकार की नीति कांग्रेस और लीग दोनों को बराबर बराबर वजन देने की थी। हालांकि शुरुआत में तो 8 प्रांतों में से कांग्रेस का मंत्रिमंडल ही था, लीग का एक भी प्रांत नहीं था।
1: जी हाँ,
0: अंग्रेज सरकार की नौकरशाही में बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें समय की आहट समझ में नहीं आई, अतः वे हिंद की स्वतंत्रता को यथासंभव पीछे धकेलने के जी जान से प्रयत्न करने लगे।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, ऐसा करने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित न हो, यही उनकी पसंद थी। आखिरकार जब अंतिम वायसराय माउंटबेटन के आगे गांधी जी ने अपना यह सुझाव रखा कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, तो वे ही अपना मनपसंद मंत्रिमंडल बनाए।
1: बिल्कुल,
0: कांग्रेस जिन्ना के उन तमाम कदमों का श्रोता साथियों समर्थन करेगी जो देश के विरुद्ध नहीं होंगे।
1: बिल्कुल कशिश, तब यह सुझाव आगे न बढ़े इसके लिए ब्रिटिश नौकरशाही ने अपनी तमाम चतुराई का प्रयोग किया। इस सुझाव का एक भाग ऐसा था कि देश हित में क्या है और क्या नहीं, इस बाबत यदि मतभेद हो तो इस बारे में आखिरी निर्णय अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं वरन एक व्यक्ति के रूप में माउंटबेटन दे। संपूर्ण सुझाव यदि जिन्ना स्वीकार न करे तो यह ऑफर कांग्रेस के सामने रखी जाए, ऐसा भी गांधी जी ने सुझाया। प्रस्ताव को सूर्य की रोशनी देख ही नहीं पाए, ऐसी सावधानी ब्रिटिश नौकरशाही ने बरती थी।
0: जी हाँ दिलेश जी, तो जैसा कि सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें चल रही हैं, ये बातें आगे ऐसे और भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करते हैं आगे। तो महत्वाकांक्षी माउंट बैटन को स्वयं पंच अथवा निर्णायक बनाए जाने वाला यह प्रस्ताव आकर्षक भी लगा।
1: बिल्कुल,
0: उनका मनोरथ अंग्रेज सरकार के समक्ष हिंद की समस्या के समाधान कर्ता के रूप में यश बटोरने का था। कशिश उन्होंने वायसराय के रूप में पद ग्रहण करने से पहले ही देश का विभाजन करने का स्वयं निर्णय कर लिया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल से इसकी स्वीकृति लेकर भारत आए थे। यह निर्णय समय से भी पहले क्रियान्वित करने की अपनी कार्य कुशलता की छाप वह ब्रिटेन और दुनिया के समक्ष अंकित करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हिंद का भारी भरकम प्रशासन संभालना ब्रिटेन के लिए लाभप्रद नहीं रह गया, इसलिए श्रोता साथियों, ब्रिटिश सरकार यथा संभव शीघ्र ही इस बोझ से मुक्त होकर ब्रिटिश राजमंडल में भारत व पाकिस्तान को स्थान देकर फौजी दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थी।
1: बिल्कुल साथियों, माउंटबेटन ने भारत आकर ये देखा कि मुस्लिम लीग तो देश में अंतर्विग्रह फट जाने की जोखिम उठाकर भी अलग देश चाहती थी, कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती थी, पर इसके विकल्प के रूप में यदि देश में अंतर्विग्रह फट पड़ता अंजलि जी, तो जोखिम उठाने के बजाय वह विभाजन स्वीकार करने को तैयार हो गई थी।
0: बिल्कुल,
1: पर श्रोता साथियों, वह पंजाब और बंगाल के विभाजन के साथ ही था। किसी भी तरह के विभाजन का पूर्ण विरोध करने वाले तो अकेले गांधी जी ही थे।
0: जी जी,
1: श्रोता साथियों, वे चट्टान की तरह दृढ़ थे, अतः माउंटबेटन ने उनको एक किनारे रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने प्रभाव में लिया। अंततः विभाजन के कागजों पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद गांधी जी को इसकी जानकारी दी गई। साथियों, हम देखते हैं कि विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जाने गई।
0: बिल्कुल,
1: करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और अरबों रुपयों की संपत्ति यूं ही बर्बाद हो गई। साथियों, इन समग्र करुणांतिका के 1.5-2 वर्ष बाद तक गांधी जी लगभग अकेले कौमी एकता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जूझते रहे।
0: जी,
1: नोआखाली में उन्होंने गांव-गांव और झोपड़े-झोपड़े में जाकर हिंदुओं को हिम्मत बंधाई। इसी तरह बिहार में गांव-गांव जाकर उन्होंने मुस्लिमों को अपने मूल स्थान पर वापस लाने का भी प्रयास किया। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कलकत्ता और दिल्ली में आमरण अनशन करके इन दोनों नगरों को कौमी आग में भस्म होने से उन्होंने ही बचाया।
0: बिल्कुल कशिश, कट्टर हिंदूवादियों को गांधी जी के इस प्रयास में मुसलमानों का तुष्टिकरण और हिंदुओं से द्रोह दिखाई देता था। वे कोहार और नोहा खाली में गांधी जी ने जो किया था उसे लेकर आंखों आगे कान रखते थे, पर बिहार और दिल्ली को आगे रखते थे। सचमुच देखें तो गांधी जी के शांति प्रयास उनके मूल हिंदुत्व वर्चस्व वाले द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध जाते लगते होंगे। फिर गांधी जी का भारत की जनता पर इतना ज्यादा प्रभाव देखकर तथा वह प्रभाव हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में पड़ते देखकर वे आकुल व्याकुल हो उठते थे। जिस दिशा में उनको गति करनी थी उनमें गांधी जी का पुण्य प्रभाव बीच में आता दिखाई देता था। उनमें से कई तो वर्षों से गांधी जी की हत्या करने का प्रयास कर ही रहे थे। आखिरकार पांचवे या छठे प्रयास में वे 79 वर्ष के निशस्त्र भगवत व्रत को मारने में सफल हुए।
1: बिल्कुल,
0: इस हत्या को उन्होंने तो व्रत की ही संज्ञा दी थी, मानो राम या कृष्ण की भूमिका अदा करते हुए रावण या कंस शिशुपाल का वध करते हो।
1: जी,
0: देश के इतिहास की दृष्टि से श्रोता साथियों, गांधी जी ने कौमी एकता के लिए कैसे प्रयास किए, उनमें क्या क्या बाधाएं आई, अभी तक हमने इन पर ही विचार किया है। सर्वधर्म संभाव गांधी जी के लिए अपने व्यक्तिगत आश्रम जीवन की आचार संहिता था। व्यक्तिगत स्तर पर और अपने आसपास के वातावरण में सांप्रदायिक एकरागिता विकसित करने का कोई भी प्रयास उन्होंने जाने नहीं दिया था।
1: बिल्कुल,
0: इन प्रयासों की वजह से ही उनका जीवन ऐसा तपोमय बना था श्रोता साथियों कि उनके प्रभाव से जलने वाले कलकत्ता व दिल्ली महानगर शांत हो गए।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि सांप्रदायिक सौहार्द प्रकरण क्या है।
0: बिल्कुल,
1: इसी प्रकरण को लेकर अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है। क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
1: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
6: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
5: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
6: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
5: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
8: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
7: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
8: ओ अंजलि बोन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
7: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
8: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
7: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
5: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
4: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
5: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

फागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है।
1: जी हाँ, हर किसी को संविधान का सम्मान करना चाहिए, सच की जीत हो, अन्याय का दमन होना चाहिए।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि पिछले रविवार को कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने जाना था संविधान बोध और संविधानिक नैतिकता के बारे में, और जैसा कि हमने कहा था कि आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर उसके अंगीकृत होने तक कई ऐसी घटनाएं घटी जो आपकी प्रकृति में निहायत दिलचस्प थी। ये घटनाएं इतनी रोचक हैं जागृति जी कि इन्हें जानकर कोई भी सहज ही चौंक उठेगा। उदाहरण के लिए, इतनी विशाल और लंबी चर्चा के बाद बने संविधान का सर्वसम्मति से पारित होना, संविधान निर्माण के दौरान आम भारतीयों के सुझाव आमंत्रित किया जाना, संविधान की मूल प्रतियों को हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखवाया जाना, संविधान में 5000 वर्षों के इतिहास को चित्र के रूप में उकेरा जाना आदि, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में प्राय आम लोगों को जानकारी नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: आज कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में हम हमारे श्रोता साथियों को बताने वाले हैं।
0: बिल्कुल। साथियों, पंडित नेहरू ने आजादी के पहले कर दी थी आजादी की घोषणा। अंजलि, अगर इस पर बात करें तो भारत के आजादी के घटनाक्रम कई बार चुका देते हैं।
1: जी,
0: यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र संविधान सभा में पेश कर दिया था।
1: जी बिल्कुल।
0: 8 बिंदुओं की इस घोषणा पत्र की पहली घोषणा थी, ये विधान परिषद यानी कि संविधान सभा भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, जागृति जी, कि हम कहते हैं कि हमारा ये दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र प्रजातंत्र होकर रहेगा। जब भारत को हम सर्वाधिकार पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। इस घोषणा पत्र को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने खड़े होकर सहमति दी और स्वीकार किया।
0: जी हाँ, बिल्कुल अंजलि, और आजादी से पहले ही स्वीकार कर लिए गए मूलभूत अधिकार। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूलभूत अधिकारों से गहरा संबंध रहा है।
1: जी हाँ,
0: 26 से 31 मार्च 1931 तक सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मूलभूत अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव पारित किया था। ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। साथ ही मूलभूत अधिकारों में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, समानता का अधिकार, सभी धर्म के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति और भाषा की संरक्षा की बात कही गई थी।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ ही हम कह सकते हैं कि इसी तरह राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में लगान और मालगुजारी में कटौती, अलाप कर जूतों को लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज और सूदखोरों से सुरक्षा, गर्भावस्था में महिलाओं के लिए अवकाश और प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकार के अधीन रखने सरीकी विशेष शामिल थे।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि इसके लगभग 26 साल बाद संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को अल्पसंख्यक समुदाय मौलिक अधिकार संबंधी समिति का गठन किया।
0: जी हाँ,
1: जब तक भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही बनाए गए और उन्होंने 23 अप्रैल 1947 को मौलिक अधिकारों का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। इस पर 19 अप्रैल 1947 को चर्चा भी शुरू हो गई और प्राथमिक स्वरूप पर 2 मई 1947 तक चर्चा भी हो गई। यह एक महत्वपूर्ण बात है जागृति जी कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के आजाद होने से लगभग 4.5 महीने पहले ही मूलभूत अधिकारों की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया।
0: जी हाँ,
1: भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका के साथ में। जी हाँ, इसी के साथ वर्ष 1895 से ही शुरू हुई अपना संविधान बनाने की कोशिश। साथियों, हमें लगता है कि भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से ही शुरू हुई, लेकिन तथ्य कुछ और भी है। वास्तव में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 यानी कि स्वराज बिल के नाम से पहला प्रारूप बनाया गया था।
2: जी हाँ।
1: ये प्रारूप किसने लिखा ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया अंजलि, लेकिन माना जाता है कि यह बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित था।
2: जी जी।
1: इस विधेयक के प्रस्तोता का मानना था कि हालांकि अभी भारतीय उन अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है जिनकी परिकल्पना इस विधेयक में की गई थी, लेकिन उनकी अपेक्षा भी थी कि भविष्य में भारत के लोग अपने देश की क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इस विधेयक में न्याय, संपदा, आश्रय, शिक्षा, मतदान, अभिव्यक्ति, ये सब अधिकारों का जिक्र किया गया था।
2: जी हाँ। इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 तैयार किया गया और इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के चुनाव हार जाने के कारण यह विधेयक रखा गया। इसके बाद वर्ष 1925 में सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की तरफ से पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपना संविधान तैयार करने की पहल हुई। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जागृति जी।
1: जी हाँ।
2: इसके बाद तेज बहादुर सप्रू, M.N. राय, डॉक्टर B.R. अंबेडकर आदि ने भी संविधान प्रारूप बनाए, यानी 50 से ज्यादा सालों तक यह पहल चली।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में। आगे जानने वाले हैं भारत का संविधान सर्वसम्मति से पारित कैसे हुआ, साथ ही 14 अगस्त 1947 की प्रतिज्ञा के बारे में।
2: जी।
1: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: जी बिल्कुल।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है, अब यही जान ही लेते हैं कि भारत का संविधान सर्वसम्मति से कैसे पारित हुआ।
1: जी हाँ,
0: तो साथियों, संविधान का सर्वसम्मति से पारित होना साधारण घटना नहीं है, क्योंकि कई बार यह मांग की जाती है कि संविधान पर मतदान या जनमत संग्रह हो, लेकिन भारत के संविधान को बिना जनमत संग्रह या बिना मतदान के सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, क्योंकि संविधान सभा में भारत के सभी समूहों, प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सहभागी थी। सबसे पहले संविधान सभा ने 46 दिन तो इसी बात पर चर्चा बहस की कि हम किस तरह का संविधान बनाना चाहते हैं।
1: जी हाँ,
0: संविधान सभा ने कुल 165 दिन और संविधान की मसौदा समिति ने 141 दिन बैठकें की। इस तरह कुछ 266 दिन चर्चा, संवाद, वाद विवाद हुआ। इस दौरान संविधान के 3 प्रारूप बने और इसके मसौदे के एक एक अनुच्छेद पर 101 दिन चर्चा बहस हुई।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं जागृति जी कि सभा के सदस्यों ने संविधान के मसौदे पर कुल 7635 संशोधन समिति को भेजे। इनमें से 2473 संशोधन संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए।
1: जी हाँ,
0: और उन पर वाद विवाद हुआ। संविधान सभा की चर्चाओं, बहसों और भारत के प्रांतों से चुने गए 210 सदस्यों और रियासतों के प्रतिनिधि समूह में से 64 सदस्यों ने अपनी बात रखी। जागृति जी, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में इस प्रक्रिया को हमेशा बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाएगा।
1: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि, ये तो आपने भारत का संविधान सर्वसम्मति से कैसे पारित हुआ उसके बारे में बताया, यही जानते हैं 14 अगस्त 1947 की प्रतिज्ञा के बारे में।
0: जी बिल्कुल
1: साथियों, 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे से संविधान सभा का सत्र आरंभ हुआ। इसके ठीक एक घंटे बाद भारत आजाद होने जा रहा था।
0: जी हाँ।
1: सबसे पहले आजादी के आंदोलन में त्याग और बलिदान करने वालों की स्मृति में मौन रखा गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने संविधान सभा में कहकर प्रतिज्ञा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है, ऐसे वक्त में पहला काम हमारा ये हो कि हम एक प्रण और एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। उन्होंने जो प्रतिज्ञा पढ़ी उसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद सभा के अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा अंतिम रूप में पढ़ी और स्वीकार की।
0: जी बिल्कुल साथियों, आप कहना चाहेंगे कि राष्ट्र ध्वज के रंग सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है। साथियों, अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग मुस्लिम और केसरी रंग हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है।
1: हाँ।
0: लेकिन जब संविधान सभा में तिरंगे से संबंधित प्रस्ताव रखा गया है जागृति जी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कुछ लोग ध्वज के महत्व को न समझकर सांप्रदायिक रूप से सोचने लगे हैं और विश्वास करने लगे हैं कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का घोतक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब झंडे के बारे में विचार किया गया था, उस समय इसके साथ कोई सांप्रदायिक चीज नहीं थी।
1: जी हाँ,
0: हमने झंडे के एक ऐसे नमूने पर विचार किया था जो सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए। हमने उस झंडे का विचार किया जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परंपरा का और परंपरा के मिश्रित रूप जो हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित है का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है कि यह झंडा साम्राज्यवाद का, किसी व्यक्ति पर अधिपत्य जमाने का प्रतीक नहीं है।
1: जी हाँ,
0: वह स्वतंत्रता का झंडा है और वह भी केवल हमारी स्वतंत्रता का ही नहीं, वरन उन समस्त मनुष्यों की जो भी इसे देखे स्वतंत्रता का चिन्ह है।
1: बिल्कुल अंजलि, सही कहा। इसी के साथ अगर राष्ट्र को पहला तिरंगा भेंट किया महिला समाज ने, अगर इस पर बात करें तो साथ ही 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की सदस्य श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्र को भारतीय महिलाओं की तरफ से तिरंगा भेंट किया था।
0: जी हाँ,
1: श्रीमती हंसा मेहता ने 74 महिलाओं के नाम पढ़े थे, जिनमें अमृत कौर, हन्ना सेन, लक्ष्मीबाई राजवाड़ी, गोशीबेन कैप्टन, अवंतिका बाई गोखले, मुथु लक्ष्मी रेड्डी, जानकी बाई बजाज, रायवन तैयब जी, अबला बोस, असवाह हुसैन, कुत्सिया एजाज रसूल, मार्गरेट कजिन्स, मेमोबाई, मृदुला साराभाई शामिल थी। श्रीमती हंसा मेहता के पास अलग अलग समुदायों की 100 महिलाओं की सूची थी जो इस अवसर पर मौजूद रहना चाहती थी।
0: जी बिल्कुल,
1: साथियों, ये एक भावनात्मक पल था। श्रीमती हंसा मेहता ने कहा कि इस परिस्थिति में ये उपयुक्त ही है कि पहली राष्ट्रीय पताका जो इस महिमा मंडित भवन पर सुशोभित हो उसे भारतीय महिला समाज एक उपहार की तरह प्रस्तुत करें।
2: जी बिल्कुल,
1: ये पताका हमारे महान भारत का प्रतीक है, ये सदा फहराती रहे और विश्व पर आज जो संकट की कालीमा छाई है उसमें उसे यह प्रकाश दे, इसकी छत्र छाया में रहने वाले प्राणियों को यह सुख और शांति दे।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में, ढेर सारी बातों से हम हमारे श्रोता साथियों को अवगत करा पाए हैं। अगले रविवार को हमारी फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ अहम बातों के साथ में।
1: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन
2: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सु।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन, जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
4: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
5: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोनो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हाँ ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
5: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा,
2: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है, एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
5: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर। मेरी ओर से स्वीकार कीजिएगा दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते ही हैं कि आज वार रविवार का दिन है और हर रविवार को हम आपके स्वास्थ्य और क्षमता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम दादी माँ की रसोई लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको स्वास्थ्य वर्धक व्यंजन विधि के बारे में बताते हैं। तो आज भी मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ श्रोता साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, क्योंकि श्रोता साथियों हम सभी जानते हैं कि रविवार ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ हर जगह अवकाश होता है और अवकाश के दिन हमें कुछ नई नई चीजें खाने का मन करता है। और ऐसे में हमारे घर की जो माता बहनें होती हैं वो थोड़े से चिंतित हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आज रविवार का दिन है और मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे बच्चों और मेरे परिवार जनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो श्रोता साथियों आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपने घर पर ही कुछ ही समय में स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों आज हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है मूंग दाल को लेकर। श्रोता साथियों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मूंग की जो दाल होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है, और दाल तो कोई भी हो, सारी दालें प्रोटीन से भरपूर तो होती ही है। लेकिन जहाँ पर मूंग दाल की बात की जाए तो मूंग दाल के अलग ही फायदे श्रोता साथियों हमें देखने को मिलते हैं हमारे स्वास्थ्य पर। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताऊंगी कि मूंग दाल के क्या फायदे हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं, साथ ही मूंग की दाल का उपयोग करके हम घर पर ही स्वादिष्ट व्यंजन क्या बना सकते हैं, तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनवाकर हम आपको पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो आइए दोस्तों पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में पहला गीत।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं मूंग दाल को लेकर। श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले भी मैंने आपको बताया कि मूंग दाल के तो ढेर सारे फायदे होते हैं। वैसे तो दाल श्रोताओं हर तरह की स्वादिष्ट होती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन मूंग दाल की अगर हम बात करते हैं तो मूंग दाल जो होती है वो काफी अलग होती है। श्रोताओं, अगर आपको बताऊं तो मूंग दाल विटामिन B6 और विटामिन C, साथ ही बताऊं तो आयरन, फाइबर और ऐसे जो कई पोषक तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम मूंग दाल का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा तरीका बताऊं तो अगर आप रात भर भीगी हुई मूंग दाल का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर पर आपको कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हम सुबह खाली पेट भीगी मूंग दाल खाते हैं तो हम दिन भर एनर्जी से भरपूर होते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि इसका सेवन करने से हमारी जो स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों, अगर बताऊं तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, ऐसे में हमारे स्वास्थ्य को लेकर हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य को करते करते हम थोड़े से निराश हो जाते हैं, कभी कभार हम थक जाते हैं। तो श्रोताओं, इसकी वजह होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसका कमजोर होना। तो ऐसे में श्रोताओं, अगर आप मूंग की दाल का सेवन करते हैं खाली पेट तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है। कह सकते हैं कि इसका सेवन करने से हम कई प्रकार के संक्रमण और कई तरह की अलग अलग बीमारियों से भी बच सकते हैं श्रोता साथियों। साथ ही श्रोताओं, ये भी कहा जाता है कि ये पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी होती है। यानी कि दोस्तों, आपने अपनी दादी नानी से भी सुना होगा कि जब हमें कोई पाचन संबंधित समस्या होती है तो हमें मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि श्रोताओं, आपको बताऊं तो इसका सेवन करने से पेट आसानी से साफ हो जाता है और इसका नियमित सेवन करने से कब्ज और अपच की जो समस्या होती है, साथ ही जो गैस की समस्या होती है उससे भी निजात हमें मिल जाता है। साथ ही जो खून की कमी होती है वो भी दूर होती है। और अगर श्रोता साथियों, आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में भी आप मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि श्रोताओं, मूंग दाल के फायदों में वजन घटाने की बात भी कही गई है। आपको बताना चाहेंगे कि जब आप भीगी हुई मूंग की दाल का सेवन करते हैं श्रोता साथियों, तो इसका सेवन करना श्रोता साथियों आप

कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से मूंग की दाल का उपयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। हाँ श्रोता साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मूंग दाल से बनने वाली इडली के बारे में। हाँ श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि रविवार के दिन कुछ चटपटा खाने का मन तो हमारा करता ही है, तो ऐसे में क्यों ना इस रविवार को हम इडली ही खाएं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। यानी कि मूंग दाल के फायदों को तो आप जान ही गए, साथ ही जो इडली होती है वो खाने में भी बड़ी टेस्टी सी और दिखने में भी अच्छी होती है। तो मैं मूंग दाल की इडली की विधि के बारे में आपको जरूर बताऊंगी दोस्तों, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।

तो श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि गीत से पहले हमने मूंग दाल का सेवन हम किस प्रकार से करें और इसके क्या फायदे हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं ये तो बता दिया। अब यहीं पर बात आती है कि आज हम मूंग दाल के साथ कौन सा व्यंजन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने बता ही दिया कि आज मैं आपको बताऊंगी कि मूंग दाल से आप कैसे इडली बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मूंग की दाल की इडली बनाने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए होगी। तो दोस्तों, ये इडली जो है वो मूंग दाल, दही और वेजिटेबल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। आपको बताऊं श्रोता साथियों, तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1 कप मूंग दाल, आधा कप दही, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच सरसों, 8 से 10 कड़ी पत्ते, आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही आधा इंच अदरक जो कि कसा हुआ हो, साथ ही बताऊं तो आधा कप गाजर जो भी कसे हुए हो, साथ ही 2 बड़े चम्मच हरी धनी पत्तियां जो कि बारीक कटी हुई होनी चाहिए, 1 छोटा चम्मच नमक या फिर आप नमक स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं दोस्तों, साथ ही आधा छोटा चम्मच इनो भी आपको चाहिएगा। तो श्रोता साथियों, ये तो हम सामग्री के बारे में जान पाए। अब यही बात आती है कि हम इसको बना कैसे सकते हैं, यानी कि इसको बनाने की विधि के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको मूंग की दाल की इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मूंग की दाल को धोकर कम से कम 3 घंटों के लिए भिगो देना है। यानी कि दोस्तों, आप इसे रात में भी भिगो सकते हैं ताकि आप सुबह जल्दी बना लें। साथ ही मूंग दाल भीग जाने पर पानी निकाल लें, दाल को बिना पानी डाले मिक्सर जार में डाले और पीस कर चिकना पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को दोस्तों एक मिक्सिंग बाउल में आप डाल दें। अब आप एक कढ़ाई ले सकते हैं जिसमें तेल गरम करना है आपको। उसमें आप सरसों, कड़ी पत्ता और हींग डालकर भून लें। अब इस तड़के को मूंग का जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें डाल दें, साथ ही कद्दूकस किए हुए गाजर, हरी धनिया पत्ती, अदरक, हरी मिर्च, दही और साथ ही स्वाद अनुसार नमक इसमें डालें और अच्छी तरह से श्रोताओं, जब तक ये मिल न जाए तब तक मिलाते रहें। अब श्रोता साथियों, इडली की प्लेट को तेल से ग्रीस कर लें, यानी कि उस पर तेल लगा लें। भाप देने से ठीक पहले बैटर में आप इनो मिलाएं। हाँ श्रोता साथियों, यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि आपको पेस्ट में पहले इनो नहीं डालना है। आपको सिर्फ कद्दूकस की हुई गाजर, हरी धनिया पत्ती, अदरक, हरी मिर्च, दही और नमक ही डालना है। इनो आपको भाप देने से पहले डालना है श्रोता साथियों। आपको बताऊं तो इनो में मिलाते वक्त 1 चम्मच पानी आपको डालना है और फिर बैटर को अच्छी तरह मिक्स होने तक आपको फेंटना है। दोस्तों, इस बैटर को ग्रीस की हुई इडली प्लेट में आप धीरे धीरे डालें। अब इसे जो इडली का कुकर आपने गैस पर चढ़ाया है उसे स्टीम करने के लिए रख दें और ढक्कन ऊपर से बंद कर दें। अब श्रोताओं, 10 से 12 मिनट तक आप इसे स्टीम यानी कि भाप में रहने दें। 10 से 12 मिनट बाद आप देखेंगे कि इडली बन चुकी है। अब श्रोताओं, इडली को इडली कुकर से बाहर निकाल लें और अब आप देखेंगे श्रोता साथियों कि आपकी इडली बनकर तैयार है। अब इसके बाद दोस्तों, आपको इडली को तुरंत हाथ नहीं लगाना है। इडली को 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देना है और चाकू की सहायता से आपको इडली निकाल लेनी है। तो दोस्तों, तैयार है हमारी स्वादिष्ट हेल्दी मूंग दाल की इडली। इसे आप गर्मा गर्म एक प्लेट में हरी चटनी या फिर सांभर के साथ परोस सकते हैं श्रोता साथियों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में मूंग दाल की इडली की व्यंजन विधि। मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जो विधि मैंने आपको बताई है आप उसे जरूर बनाएंगे श्रोता साथियों, और फिर हमें जरूर बताएंगे कि आपको वह विधि कैसे लगी श्रोता साथियों। तो आप ये बताने के लिए हमारा पता लिख लीजिए, जिसके माध्यम से आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने जब यह इडली घर पर बनाई तो आपको कैसी लगी। तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर
हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नई व्यंजन विधि और स्वास्थ्यवर्धक विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अब आपकी दोस्त कशिश पाराशर को कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ दोस्तों, नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ।

भाई बहनों, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाइयों बनो, आ तो हती अमारी आज नी सभा। हमें आशा करा कि आज नी सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने अमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या, एने बल्ले आप अमने राय सुझाव आली शको अमारे अणा पता माते। अमारु पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्टू कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती अमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।